0: हम 6 o'clock हमारे हॉस्पिटल में आए थे, उनके पास एक सोनोग्राफी की रिपोर्ट थी और हमारे जो ऑन ड्यूटी गायनेकोलॉजिस्ट वहां पे मौजूद थे, उन्होंने वो रिपोर्ट देख के उनको सीजर लगेगा, इमरजेंसी में करनी पड़ेगी और बेबी के लिए NICU लगेगा ऐसा बोला था। और वी हैव 10-bedded NICU एट अवर हॉस्पिटल बट ऑल बेड्स वेर ऑक्यूपाइड एंड पेशेंट एंड रिलेटिव्स वेर टोल्ड टू, उनको ऐसा एडवाइस किया था कि अगर बेबी को NICU लगेगा तो अपने पास नहीं है तो वी हैव अवर रेफरल सेंटर एट सायन हॉस्पिटल, तो वहां लेके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ टाइम मांगा था सोचने के लिए। तो उसके बाद एक कॉल आया था कि रिलेटिव ने वो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट के हाथ में देने की कोशिश की थी, तो गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि हमने आपको जो बताया है अभी तक, जो जानकारी दी है वही हमें बताना है, तो अलग से फोन पे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसके 5-10 मिनट के बाद ही यहाँ पे जो हमारे नगर सेवक है और कोई उनके साथ लोग आए थे, और वो जो डिलीवरी बॉय है वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हमारे RMO और हमारे स्टाफ, हमारी मावशी, वो सब लोग वहाँ मौजूद थे। तो इमिजिएटली कुछ बात स्टार्ट करके उन्होंने अपने डॉक्टर्स को मारना शुरू किया था, वो हम लोग वीडियो से, हम लोग ने जो देखा है वही बता रही हूँ। और जो हमारे डॉक्टर थी उन्होंने भी कुछ बोलने की कोशिश की तो उनके हाथ पे ये झटका लगा के उनकी फोन भी उस समय हाथ से गिर गई थी। सब लोग काफी डरे हुए थे, हमारी स्टाफ भी कोशिश कर रहे थे, तो वो उसमें डॉक्टर उनके ऊपर भी गिर गए। जो हमारी मावसी खड़ी थी पीछे तो उनको भी 2-3 बार डॉक्टर को मारा गया था, मेरे डॉक्टर RMO थे उनको।
1: डॉक्टर दीपा, इस वीडियो में जो दिख रहा है, व्हाट वी आर एबल टू क्लियरली सी इज दैट अ लेडी डॉक्टर, एटलीस्ट 2 ladies इन दैट वीडियो आर अटैक्ड फिजिकली उन पर असॉल्ट हुआ है। रमेश मात्रे जो हैं कल्याण डोंबिवली के कोऑपरेटर, रूलिंग शिंदे सेना के कोऑपरेटर हैं, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है अभी तक। बट व्हाट इज द रिएक्शन अमंग द डॉक्टर्स? दे हैव गॉन ऑन अ स्ट्राइक राइट नाउ। व्हाट आर दे टेलिंग यू? किस टाइप का अटैक था? एक तो ये कैमरा पे पूरा रिकॉर्ड हुआ है। व्हाट आर दे सेइंग टू यू मैडम?
0: नहीं, अवर ऑल हॉस्पिटल्स KDMC, वी हैव 3 hospitals, एवरीवन वी कैन नॉट से वी आर ऑन स्ट्राइक बट वी हैव शट डाउन द रूटीन सर्विसेज बट वी आर डूइंग इमरजेंसी सर्विसेज। वी हैव अवर 27 हेल्थ सेंटर्स आल्सो, देयर आल्सो वी हैव स्टॉप अवर वर्किंग एट प्रेजेंट, वी आर डूइंग ओनली इमरजेंसी वर्क। The Indian Medical Association, our Kalyan branch and Dombivli branch, they have fully supported us. And हम सब लोगों ने मिलके, हमारे आयुक्त सर जो श्री अभिनव जी गोयल सर है उनको भी मिले हैं हम सब लोग, ऑल अवर सिस्टर्स, स्टाफ, डॉक्टर्स और अदर पैरामेडिकल स्टाफ ऑल्सो, एवरी वन इज डूइंग ओनली इमरजेंसी वर्क।
1: What are the doctors telling you? Doctors and nurses who were assaulted in this manner, madam, वो आपको क्या कह रहे हैं about this horrible incident?
0: नहीं, हमने सबका statement लिया है इसके बारे में, और जो रात में भी हम लोग कल police station रात में भी थे, I was there with them, और अभी हम लोग police station में ही है और FIR का हम दर्ज कर रहे हैं।
1: Is the police cooperating in registering an FIR? FIR क्या दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है?
0: In process, we are in process.
1: Are you facing any resistance, madam? Because ये रमेश मात्रे जो हैं उनके खिलाफ 2-3 पुराने भी criminal cases हैं, कोई भी action नहीं लिया गया है उसके खिलाफ अभी तक।
0: तभी के तभी वो उस time में जो भी हुआ होगा, तभी वहाँ उस टाइम भी जो अपने सीनियर्स रहते हैं या फिर उनको बताया गया था ये सब उसके बारे में, और अभी इमीडिएटली इनका ही था या पहले भी 1-2 बार हमारे डॉक्टर ने FIR किए हुए हैं।
1: तो ये कैसे हो सकता है डॉक्टर दीपा? एवरीवन इज शॉक्ड व्हेन दे सी दिस वीडियो ऑफ अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अ कॉर्पोरेटर वॉकिंग इनटू अ हॉस्पिटल एंड असॉल्टिंग डॉक्टर्स, दैट टू अ लेडी डॉक्टर इन दिस मैनर। वी आर ऑल शॉक्ड वॉचिंग दिस मैडम, ये कैसे हो सकता है?
0: From them, and now after seeing the total CCTV footage, it was really shocking.
1: What is your demand from the government, madam? Abhi tak FIR is in the process. Do you feel that the government needs to take action immediately? You are, after all, healthcare workers, doctors who have been assaulted by a ruling party corporator.
0: Pardon?
1: What action do you want to see taken? Do you want to see Ramesh Mhatre booked and arrested?
0: We are अभी ये जो FIR बनेगा उसके बाद में जो यहाँ की पुलिस है वो जो appropriate action they will take ऐसे हमें विश्वास है हाँ
1: लेकिन ये ruling party का आदमी है मैडम डॉक्टर शुक्ला क्या आपको थोड़ा nervousness है क्या आपको आपके staff में कोई डर है कि ये एक ruling party का आदमी है जो अंदर आया है आपको मारा है ऐसे
0: We are with our staff. That is true.
1: Okay. I understand your sentiments, madam. NDTV ne is story ko uthaya hai. I have asked you the questions. We will be questioning the government and ensuring justice for each and every doctor and nurse who was assaulted in that video. That is my promise to you. Thank you for speaking to NDTV, ma'am. Thank you.
0: Thank you.
1: Advocate Susi Ben Shah, spokesperson of the Shinde Sena, to which this cowardly corporator Ramesh Mhatre belongs, is live with me. Susi Ben, welcome. What action is being taken against this absolute rowdy corporator, madam, from your party? May I ask?
2: I will tell you this. Good evening, Shivarur. And I am also seeing the video. And such behavior is absolutely unacceptable. And special to a woman is absolutely unacceptable. But our Pramukh Neta Eknath Rao Ji Shinde, the Honorable DCM of Maharashtra, has repeatedly said that this Maharashtra is a state which it accepts and only rule of law prevails. And let me assure you, after this investigation, whichever party he is in, He's done some wrongdoing. He will be punished as per the rule of law. But,
1: no, but even an
2: like
1: FIR has not been registered according to the latest information.
2: Allow me to complete, Shivar.
1: You see, Ben, FIR has not been lodged.
2: FIR is a process. FIR is a process. And I think your Dr. Shukla also was quite convinced that FIR will be lodged. And if it is wrongdoing is done, FIR will be lodged.
1: No, you but what is what why say, is your party no, taking so long? What is your party waiting? No,
2: you are not
1: Ms.
2: allowing
1: Ms.
2: me
1: Shah,
2: to...
1: Ms. Shah, you are using... with greatest of respect, you have been on my show before. You know I don't like interrupting my guests. I am asking you a very straight moral question. What is taking so long to take action? What due
2: what
1: process
2: is,
1: do you need
2: apart right
1: from a video
2: is,
1: of this rowdy, your colleague, your party colleague slapping a woman doctor?
2: What due process are you waiting for? No, what is right will be done. Let me tell you this. But on this flip side, I will tell you this. 4th of July, why the parents were so anguished and maybe the corporator was so anguished. Yes, I don't pardon. Completely no pardon.
1: No, don't do that. Don't do that, Susi Ben Shah. You're justifying the action.
2: You're not allowing to
1: don't
2: speak.
1: Do that.
2: You should not control what I should speak.
1: You cannot justify it by saying anything about the NICU
2: bed. 2 days ago, Shivarur, 2 days ago in Navi Mumbai, a mother and a child lost their life in delivery in Navi Mumbai.
1: Yeah.
2: It was sometimes in May. Hold on. Allow me to complete. I'm respecting what you are saying. In sometimes in April, late April, 4 doctors and 2 nurses were booked for alleged negligence where an 11-month-old child lost his life.
1: You're diluting the issue.
2: Why? So therefore...
1: You're diluting the issue. Come on.
2: Therefore, maybe the parents were very, very anxious because to shift a newborn child to NICU in the different hospitals...
1: Madam, the parents are allowed to do whatever they want. They can feel as anxious as they want. Who the hell is your party colleague, Ramesh Mhatre, to behave in this manner and especially to slap a lady doctor? Who is he? Why have you not thrown him out of your party?
2: Hold on. Why it led to this, Mr. Shivarur, why it led to this? Imagine...
1: No, sorry. The
2: And what is right...
1: The people of Mumbai are rejecting your justification. Your justification is rejected, madam.
2: I'm not justifying. I'm putting a viewpoint.
1: There is no viewpoint. It is rejected. I'll tell you why, madam. Let me tell you why. Because India is not a Gunda Raj, madam. Mumbai is not a Gunda Raj.
2: Certainly not.
1: Mumbai is not a Gunda Raj. Ramesh Mhatre is not a godfather. He's not a thug. He is a thug, but he's not an organized crime lord. Who the hell is he to go and slap somebody in a hospital?
3: Or anyone, you must mind your language. We are on a national TV.
1: He is a thug. I will repeat it, madam.
3: He's a corporator. He's an elected representative.

0: Let's take you through more developments coming in at this hour, where Prime Minister Narendra Modi has outlined a new roadmap for India and Indonesia ties, with defence, maritime security and critical minerals emerging as the key pillars of cooperation. Addressing the Indian community in Indonesia, the Prime Minister said, India is moving forward with the mantra of reform, perform and even transform, and underlining that India's self-reliance is a force multiplier not just for India but for the entire ASEAN region. Earlier, during talks with the Indonesian president, the two countries agreed to significantly expand cooperation, signing nearly a dozen agreements spanning critical minerals, technology, maritime security. The two sides also inked deals on BrahMos and the Astra missile systems, underscoring India's growing strategic footprint in the Indo-Pacific.
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है। भारत और इंडोनेशिया दिल से भी करीब है और भूगोल से भी निकट के पड़ोसी है। भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप से इंडोनेशिया के आचे की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। सोचिए, भारत के एक द्वीप से इंडोनेशिया भारत के राज्यों से भी ज्यादा करीब है। आपने उस समय कहा था और आज फिर से कहा, और आपने उस समय भी कहा था कि आप में इंडिया का डीएनए है। आपकी उस बात, एक बात ने आज भी मैंने देखा सबसे ज्यादा तालियां उसी समय पड़ी। और भारत में भी करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का दिल अपने जीत लिया था। उस एक वाक्य ने भारतीयों के दिलों को छू लिया था। वो डीएनए म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है। डीएनए साझी विरासत से बना है।
0: On that note, stepping into a very short break, more news and updates on the other side. Stay with us on the broadcast.

0: Let's take you through more developments coming in at this hour, where Prime Minister Narendra Modi has outlined a new roadmap for India and Indonesia ties, with defence, maritime security and critical minerals emerging as the key pillars of cooperation. Addressing the Indian community in Indonesia, the Prime Minister said, India is moving forward with the mantra of reform, perform and even transform, and underlining that India's self-reliance is a force multiplier not just for India, but for the entire ASEAN region. Earlier, during talks with the Indonesian president, the two countries agreed to significantly expand cooperation, signing nearly a dozen agreements spanning critical minerals, technology, maritime security. The two sides also inked deals on BrahMos and the Astra missile systems, underscoring India's growing strategic footprint in the Indo-Pacific.
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है। भारत और इंडोनेशिया दिल से भी करीब है और भूगोल से भी निकट के पड़ोसी है। भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप से इंडोनेशिया के आचे की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। सोचिए, भारत के एक द्वीप से इंडोनेशिया भारत के राज्यों से भी ज्यादा करीब है। आपने उस समय कहा था और आज फिर से कहा, और आपने उस समय भी कहा था कि आप में इंडिया का डीएनए है। आपकी उस बात, एक बात ने आज भी मैंने देखा सबसे ज्यादा तालियां उसी समय पड़ी। और भारत में भी करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का दिल अपने जीत लिया था। उस एक वाक्य ने भारतीयों के दिलों को छू लिया था। वो डीएनए म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है। डीएनए साझी विरासत से बना है।
0: On that note, stepping into the broadcast.

0: और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एक हाई लेवल की एसआईटी गठित करे और उस एसआईटी के माध्यम से सच्चाई समाज के सामने आनी चाहिए।
1: शुरुआत से ही इन्होंने गलती करी, क्योंकि जो नरसिंह राव जी वक्त में जो ट्रस्ट बना था तो उसमें साधु संतों को, धर्माचार्यों को, उनको लेके ट्रस्ट बना था। वैसे ट्रस्ट बनता भी है, मान लो अभी ये नौबत नहीं आती, उसमें आप अपने साथ में कुछ लगा देते अधिकारियों को, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जिस रूप में इन्होंने जो एक तरफा बीएचपी आरएसएस के लोगों को लेकिन ट्रस्ट बनाया गया और कोई जवाबदेह तय नहीं की गई, कहते कि बहुत पहले से मालूम पड़ गया था कि चोरी हो रही है, एसबीआई या कोई बैंक जो थी वो गिनती के अंदर, काउंटिंग के अंदर दूसरे लोगों को घुसा दिया गया, जो कैमरे लगे हुए थे वो गवाह दे रहे थे, अधिकारियों के आपस के अंदर चर्चा भी करी और उन बातों को दबा दिया गया। तो ये बात बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई।
2: देखिए, राम मंदिर का जो ये प्रकरण आया है जिसमें भारी पैमाने पर चंदा चोरी, जेवरों की चोरी, आभूषणों की चोरी है, और जिस तरह से जमीनों की खरीद फरोख्त में चोरी ये सब हुई है, उसको लेके पूरा देश पर आहत है, चिंतित है आगा। और ऐसे लोग जो भाजपा के समर्थक होते थे वो भी अब कह रहे हैं कि भाई तो बहुत गलत काम है हुआ है, ये नहीं हमने कल्पना में भी सोचा था कि लोग ये काम करेंगे, भगवान राम के मंदिर को लूट लेंगे, भगवान राम के साथ जो है विश्वासघात करेंगे, वहां चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी करेंगे, ये नहीं सोचा था। तो इससे पूरा देश जो है बहुत चिंतित है।
3: ये पांच नाम सजेस्ट किए हैं कि इसको सीईओ बनाया जाए और पांचों की काबिलियत ये हुआ कि महान भ्रष्ट है, तो अभी नहीं सुधरेंगे ये, तो कब सुधरेंगे? मोदी जी आपकी छवि बिगड़ रही है, अमित शाह जी आपकी छवि बिगड़ रही है, अरे महंत जी आपके मठ ने तो 19वीं सदी से राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी है, एक व्यक्ति भी क्या हमारे गोरखनाथ मठ से एक आदमी की भी नियुक्ति ट्रस्ट में क्यों नहीं करवाई आपने? आपका आदमी होता तो ये बिल्कुल नहीं होने देता, हमको आपकी लीडरशिप पे भरोसा है। आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हो हम उसकी तारीफ करते हैं, हालांकि आप उस पर कुछ कर नहीं पा रहे हो क्योंकि सारे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को संरक्षण मिला हुआ है दिल्ली से।
4: And joining me live from Mumbai tonight is Ramesh Bhatre, co-operator of the ruling Shiv Sena Shinde faction in Maharashtra, who was caught on CCTV camera along with his accomplices thrashing lady doctors and nurses inside a hospital in Dombivli Kalyan. Ramesh, NDTV se baat karne ke liye dhanyawad, lekin mera pehla seedha sawal aapse hai. रमेश जी, ये जो वीडियो जो सामने आया है जो एनडीटीवी ने ब्रेक किया है, सीधा सवाल है रमेश जी, ये है कि क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए, क्या आपको शर्म नहीं आती?
5: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है, लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया।
4: वीडियो तो सामने है सर, वीडियो तो सामने है हमारे।
5: नहीं, उसका फोन कान से हटाया हमने
4: सर, वीडियो
5: फोन कान से हटाया, फोन पे बात कर रहे थे, हमसे बात ही नहीं कर रही थी वो।
4: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठाने का?
5: फोन के ऊपर मारे, फोन रखो।
4: आपको किसने
5: हम शिवसैनिक है, लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते।
4: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर
5: वो जो बता रहे हैं, वो जो बता रहे
4: वैभव पे आपने हाथ उठाया है,
5: लेकिन वो जो
4: गुंडे
5: फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया,
4: और उसका अलग नहीं किया आपने, उसके हाथ और गले
5: हमसे बात नहीं कर रही थी।
4: ये वीडियो पे आ रहा है, ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते।
5: गले पे नहीं मारा है, कान में।
4: चलो।

0: फोन रखा था फोन के ऊपर हमने झटका दे के फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से।
1: रमेश रमेश जी,
0: वो फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन
1: मेरा सवाल

0: भी अन्याय हो वह आप अपना तरीका दिखा सकते हो, लेकिन बात सुनिए
1: बाला साहब
0: हमारी भी
1: आपको
0: वह एक
1: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
0: अन्याय के खिलाफ कुछ भी आप हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया। आप
1: ये वीडियो तो देखिए
0: क्या वो डॉक्टर एक पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या? देखने दो ना पब्लिक को, कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था
1: तो
0: क्या हुआ हो रहा था वो सुनिए हमारे
1: 20 सेकंड। मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, आप बताइए कि आपने ऐसे महिला डॉक्टर और नर्सेस पे हाथ क्यों उठाया? 20 सेकंड में बताइए कि
0: 2 मिनट दिए, 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट
1: बताइए बताइए, उसके बाद मैं सवाल करूंगा।
0: हाँ वहाँ एक लेडी डॉक्टर प्रेग्नेंट थी, लेडी डॉक्टर एक लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी डे पूरा हुआ था, उसको लेबर पेन चालू हुआ था, उसका पेट में वो बच्चों ने टूल पास किया था, क्रिटिकल कंडीशन थी और उसको वहाँ बेड नहीं था करके उसको साइन भेज रहे थे। पूरा मुंबई बारिश में डूब गया था, कॉलेज बंद था, स्कूल बंद था, ऑफिसेज बंद थे, पूरा ट्रैफिक जाम था और बारिश इतना था कि डोंबिवली से निकलने के लिए 3 घंटा लगता था और उसके पास 10 मिनट भी नहीं था और ना वो हमारे CMO को फ़ोन लगा रहे थे, ना हमको नंबर दे रही थी, तो हम क्या करें? नंबर नहीं दे रहे थे करके वो डॉक्टर के ऊपर
1: जो महिला डॉक्टर पे हाथ उठाया,
0: फिर डॉक्टर ने जो नंबर
1: महिला डॉक्टर
0: नहीं उठाया हमने।
1: अगर बेड अवेलेबल नहीं है, अगर बेड अवेलेबल नहीं है, क्या आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं फोन कर सकते?
0: हाँ।
1: आप एक बेचारे डॉक्टर पे क्यों हाथ उठा रहे, नर्सेस और डॉक्टर्स पे क्यों हाथ उठा रहे? आपका ही सरकार है रमेश जी,
0: बेड अवेलेबल
1: सरकार है, आप
0: बेड अवेलेबल नहीं है ना,
1: क्यों नहीं फोन
0: करते? सुनिए मेरा बात भी सुनिए जरा, अगर अगर बेड अवेलेबल नहीं है ना तो सर एक कानून है महापालिका का कि अगर अपने पास जो सुविधा नहीं है तो
1: अरे वाह सर,
0: सुविधा लेके पेशेंट को
1: आपने कानून
0: देना, बराबर
1: इसके इसके लिए बहुत तालियां आपको कि आपने कानून का शब्द
0: राहत देना और
1: कानून का शब्द,
0: यही बात हम उनसे बोल रहे थे कि आप में हाँ तो हाँ ऐसा है हमारे महापालिका में और कई बार हमने किया है क्योंकि मेरा वार्ड में ही वो हॉस्पिटल आ रहा है आता है तो वहाँ मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो पूरा ग्रामीण कल्याण ग्रामीण लोकसभा वार्ड है ना वहाँ से बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं और ऐसा कई मामले हमने सॉल्व किया है, लेकिन ये नए डॉक्टर है बहुत घमंडी है और उन्होंने मैडम का नंबर नहीं दिया CMO का हमारा, फिर से वो जो घटना घटी ना वो लेडी के ऊपर हाथ हमने नहीं उठाया और कभी ना उठाएंगे, लेकिन जो डॉक्टर के साथ हुआ ना तभी हमको नंबर मिला और हमारे सुनिए बात मेरा सर मेरा बात सुनिए,
1: सुन लिया जो आप बोल रहे हैं आप, अब मैंने सुन लिया, आप बेसिकली ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि आप एक जननायक हो, ठीक है, आप एक हीरो हो, आपने एक नायक हो जिसने नागरिकों का जो का जो कंसर्न डिमांड थे, आपने आपने एक महिला डॉक्टर और नर्स पर हाथ उठा के आपने अपना फर्ज निभाया है, ये आप बोल रहे हैं। मैं आपसे
0: सरासर झूठ है, हमने किसी नर्स के ऊपर और किसी नहीं नहीं सर एक कैमरा में दिखता रहेगा, लेकिन मैं फोन हटाया वो तो आप
1: रमेश जी आपके पार्टी आपके सरकार आपके समर्थकों को शर्मिंदा मत कीजिए, आपने जो किया है ये पूरे पूरा सामने है, सब देख रहे हैं NDTV पर, ये वीडियो सामने है, आपका हाथ दिख रहा है,
0: नहीं,
1: जो गुंडे हैं आपके साथ है
0: तो मार रहे ऊपर उसके फोन के ऊपर फोन हटाया झटके से,
1: एक रजिस्टर लेके किसी के सर पे मारा है,
0: झटके से फोन हटाया,
1: फोन पे मारा है,
0: फोन पे मत रहो बिजी रहो, पेशेंट के बारे में सोचो, यही बोल रहा था, बंबई कैसे जा सकते हैं,
1: फिर से मैं पूछता हूँ आपसे आपको हक किसने दिया आप ऐसे हॉस्पिटल जाके हाथ उठा के किसी पर मारना, फोन साइड पे करना, जो भी आप बोल रहे हैं, आपने हिंसा इस्तेमाल किया,
0: तो क्या आप डॉक्टर को परमिशन दिया है, डॉक्टर को परमिशन दिया है उधर ही जगह पे मारने का?
1: इधर उधर मत कीजिए
0: डॉक्टर को किसने हक दिया पेशेंट के केयर ना करना? डॉक्टर किस लिए होता है? भगवान नहीं आ सकते इसके लिए भगवान ने डॉक्टर बनाया?
1: गुंडे हो आप, कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, ये तो साफ कर दीजिए, आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो? अगर आप कॉपरेटर हो तो कानून के अंदर ही काम करना पड़ेगा आपको,
0: आप
1: गुंडे कैसे बन सकते हो?

0: जवाब देगा।
1: मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे,
0: जान बचाने
1: आपने
0: के लिए
1: जो
0: से
1: आप आपने जो किया है,
0: मेरे को तो उधर डॉक्टर गुंडे लगे।
1: सर अगर डॉक्टर गुंडे है वो ठीक है, आप नहीं कर सकते, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप रूलिंग पार्टी के कॉर्पोरेटर हो, आप कैसे कर सकते हैं ये सब? अगर किसी ने बेड नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, अगर किसी ने किसी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया,
0: कुछ नहीं किया है,
1: आप पुलिस के पास जा सकते हो, आप
0: हेल्थ
1: डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो, आप किसी के भी पास जा सकते हो, आप रूलिंग पार्टी के कॉर्पोरेटर हो, आप हाथ कैसे उठा सकते हो?
0: अगर ये हम ऐसा नहीं करते, जो अगर हम फोन के फोन नंबर मैडम का लिया और मामला आधा घंटे में सोल्व हुआ, डिलीवरी भी हो गया, मैडम ने शिफ्ट किया पेशेंट को, हमारे सीएमओ ने
1: मतलब
0: मैडम
1: उसके साथ बात तो के बाद तो रमेश जी
0: मामला कैसा सोल्व हो गया और ये 5 घंटे से ये क्यों उसको रखड़ा रहे थे?
1: रमेश जी शर्मिंदा
0: दोनों डॉक्टर
1: आप बेसिकली
0: रखड़ा के रखा था ना, कोई डिसीजन ले रहा था।
1: तो फिर आप ये सुनो
0: और इसके लिए फिर क्या कर सकते थे हम लोग?
1: मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हो एनडीटीवी पर कि आगे जाके भी अगर किसी को बेड नहीं मिला,
0: लड़की थी
1: आगे सर
0: डिलीवरी डेट पर आ गया था,
1: सर ये सब
0: लेबर पेन शुरू हुआ था, ये सब बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे।
1: डोंट प्ले द कास्ट कार्ड कम्युनिटी कार्ड, ये सब उसके पीछे मत छुपिए आप, दलित कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, उस
0: नहीं नहीं हम उसके ऊपर स्टिकअप रहेंगे सर।
1: नहीं नहीं
0: हम उसके ऊपर स्टिकअप रहे, हम पब्लिक
1: हम मूर्ख नहीं है,
0: हमको चुन के दे
1: एनडीटीवी
0: डॉक्टर ने चुन के
1: नहीं
0: दिया,
1: आपको नहीं जाने देंगे,
0: नहीं हमको पब्लिक ने चुन के दिया है सर।
1: आपको
0: सर
1: सवाल सुनिए,
0: चुन के दिया,
1: सवाल सुनिए,
0: लड़ेंगे ना
1: रमेश
0: माथुर, डॉक्टर का तो हम सम्मान करते हैं कि कोरोना के सीजन में कोरोना का
1: आपका जो सम्मान है डॉक्टर के लिए, मैंने
0: बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, जिसको हम कभी भूलेंगे नहीं।
1: डॉक्टर के लिए सम्मान जो है आपके पास
0: बेकार था, हमारा पेशेंट मर सकता था उधर जगह पे, मरने की नौबत आए थे हमारे पेशेंट की सर।
1: सीधा सवाल
0: नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: क्या बोल रहे हैं, क्या आप बोल रहे
0: हैं?
1: क्योंकि जब ये इंटरव्यू शुरू हुआ था आपने एक शब्द इस्तेमाल किया अफसोस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी कि क्योंकि अभी जब आपका टोन में आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं निकाल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि आप एक मैसेज भेज रहे हैं कि आगे जाके भी अगर ऐसा कुछ
0: आप हमको गुंडा बोल रहे हैं, किसने दिया बोल रहे हैं गुंडा बोल रहे हैं
1: सर,
0: हम कौन सा टोन वापरेंगे?
1: मैं सीधा सवाल सुनिए,
0: हमको शर्म नहीं आई, पब्लिक ने हमको चुन के दिया ना, डॉक्टर ने चुन के दिया सर।
1: नहीं नहीं आप दो चीज बोल रहे हैं, एक चीज सुनिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये है कि अगर आगे जाके भी ऐसा कुछ होता है, क्या आप ऐसे ही मारेंगे डॉक्टर्स को, या आपको अफसोस है कि ऐसा हुआ है?
0: नहीं सर, एक मेरा
1: अफसोस नहीं है, बिल्कुल अफसोस नहीं है।
0: आप मेरे को एक मिनट दो, आधा मिनट,
1: नहीं सीधा सवाल सर,
0: ऐसा
1: सवाल है, सीधा सवाल है।
0: मेरे को दो बहने है, मेरे को तीन बहुई है, तीनों का इनका सबका डिलीवरी में कभी हम उसका चिल्लाना
1: किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये सब बोलने का
0: वो हमको नहीं देखने को मिला, लेकिन नहीं सुनो, लेकिन 100 से ज्यादा ऐसा पेशेंट हमने हॉस्पिटल में देखा है जो
1: वो आपका काम है,
0: जमीन के ऊपर चिल्लाते पेन सहन करते हुए,
1: जो भी है वो आपका काम है,
0: ये आप नहीं उठा सकते, क्या चीज होते है डिलीवरी के टाइम एक औरत का हालत क्या है,
1: जो भी है वो सब आपका काम है, आपने किसी पर फेवर नहीं किया सर, वो आपका काम है, पब्लिक
0: जो भी हुआ ना
1: हुए, ये आपका काम है,
0: जो हुआ उसका
1: कोई बड़ी बात नहीं है,
0: हमने जताया है
1: सर, आप जो
0: हमको
1: काम करते हैं
0: बात करने
1: आपका काम है सर,
0: हम आते ही नहीं, अगर हमारा फोन उठा दे तो हम आते ही नहीं सर उधर,
1: तो आपके पास
0: फोन उठा था, अगर हमारा फोन लेते हैं डॉक्टर तो
1: आखिरी सवाल
0: जरूरत ही नहीं पड़ता था।
1: आखिरी सवाल आपसे रमेश जी, अफसोस बिल्कुल नहीं है, हिंसा इस्तेमाल करने का कोई अफसोस ही नहीं है, रिग्रेट नहीं है, क्या आप माफी मांगेंगे डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर वैभव जो दो नर्सेस थे वहां पे, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे? FIR दर्ज हुई है आपके खिलाफ, आपके गुंडों के खिलाफ भी दर्ज हुई है,
0: दलित थी और मेरे को सर सुनिए।

0: सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
1: वो भी दलित
0: उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंडर द लॉ व्हेन वायलेंस हैज बीन यूज्ड।
1: नहीं फर्क पड़ता है, मेरी बात तो सुनो, वो लेडी डॉक्टर थी ना सर, लेडी डॉक्टर थी ना, वो भी दलित समाज है और मेरे को अभिमान है कि दलित समाज की लेडी डॉक्टर बनती है, एक लड़की डॉक्टर बनी है, हमारे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उसके लिए मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसके लिए।
0: लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप ये दलित कार्ड प्ले कर रहे हो।
1: अभी मारूंगा,
0: आप कुछ कागज से पढ़ रहे हैं क्या सर?
1: मैंने किया है,
0: आप कुछ
1: एक दो जान बचे
0: पढ़ रहे हैं?
1: मैं हमारे वजह से दो जान बच गई है सर, हमारे दो जान बच गए हैं, हम एसएससी पास है
0: सर। ये तो साफ नजर आ रहा है कि आपके पास एक नैरेटिव मिल गया है,
1: हमारे
0: पास एक नैरेटिव
1: जान
0: बच गई है निकलने का। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपको
1: और उसके माँ की जान बच गई है।
0: डॉक्टर श्रुति और डॉक्टर वैभव और दो नर्सेस जो हैं, जो जिसको आपने मारा है और आपके गुंडों ने मारा है, क्या आप माफी मांगेंगे? एनडीटीवी, आप नेशनल चैनल पर हो ना लाइव हो, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे?
1: कार्यकर्ता थे सर, वो कार्यकर्ता थे हमारे पार्टी के, कार्यकर्ता थे
0: वो जो गुंडे हैं। ये विजुअल देखिए एनडीटीवी पर, ये रो रहे हैं नर्सेस, ये नर्सेस और डॉक्टर्स रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है सर। वो स्ट्राइक पर है अभी क्योंकि आपने हाथ उठाया उन पर,
1: तो सर आंखों में आंसू है
0: जो टीवी
1: और
0: पर
1: जो प्रेग्नेंट महिला थी वो क्या जानवर थी क्या?
0: क्या आगे जाके
1: आदमी नहीं
0: करेंगे आप? आगे जाके
1: काम उसका नहीं था,
0: ये सब
1: हमारे सीएम ने,
0: ये सब छोड़िए, आप जननायक नहीं हो सर, हाथ उठा के आप जननायक नहीं बनते हो, आप गुंडे ही हो। अगर आप हाथ उठाएंगे तो आप गुंडे ही हो, आपको गुंडा आ जाएगा,
1: वो आपकी भाषा में हो गए सर। लेकिन हमको तो अगर हम उधर नहीं जाते तो दो दो एक बच्चे के और माँ की जान चली जाती सर।
0: आखिरी दो सवाल,
1: हम उधर गए और इसके लिए उसकी जान बच गई, अभी भी वो सेफ नहीं है।
0: मुझे समझ में आ गया, क्रिटिकल
1: कंडीशन में बच्चू है वो,
0: मुझे समझ में आ गया कि
1: वो आप सुनो सुनो उस बारे में भी आप सोचे ना सर।
0: नहीं नहीं मैं सब कुछ सोच रहा हूँ, अगर बेड अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में, बेड अवेलेबल नहीं है, अगर कोई काम नहीं कर रहा है,
1: मांगता था,
0: ये आपकी सरकार है, ये आपकी सरकार है।
1: 5 घंटे अगर उसके साथ
0: आप बेचारे डॉक्टर्स को जाके मार रहे हो सर, बेचारे डॉक्टर्स को
1: बेचारे कैसे हो?
0: आपकी सरकार है, अगर बेड नहीं है हॉस्पिटल में, ये आपकी गलती है, आपकी सरकार की गलती है।
1: बेचारे डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन उसको भगवान नहीं दिखे मेरे को।
0: आपने भगवान को मारा है,
1: डॉक्टर तो भगवान होते हैं, दूसरे
0: आप भगवान को मारा है। तो आखिरी सवाल,
1: एक पेशेंट को वो
0: आखिरी सवाल, ये सब
1: तो
0: हमने बात कर लिया है,
1: आशीर्वाद देते हैं, जान बचाते हैं,
0: आपकी बात सुन लिया हमने। आखिरी सवाल,
1: आपने ब्लेम किया है और वो ब्लेम हम नहीं मानते हैं, हमने कोई लेडी डॉक्टर को मारा नहीं है, ना किसी को मारा है हमने,
0: जो भी आखिरी सवाल,
1: बच्चे का जान बचाने, माँ का जान बचाने के लिए।
0: दर्शक और नागरिक देख रहे हैं वीडियो पर, दर्शक और नागरिक देख रहे वीडियो पे कि आप कि क्या हुआ है और क्या आप बोल रहे हैं, वो उनको उनको तय करने दीजिए। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल,
1: वो खाली हंगामा देख रहे हैं,
0: सवाल
1: सिचुएशन उनको मालूम नहीं है, सिचुएशन यही है कि वो लेडी को लेबर पेन चालू था, बच्चे
0: ने हाथ उठाते हुए
1: और उसका आखिरी एंड आया था, सायन हॉस्पिटल में बंबई डूब चुकी थी, तभी सायन
0: वीडियो है सामने, डॉक्टर्स और नर्सेस स्ट्राइक पर है अभी,
1: इमरजेंसी सर्विसेज, उसकी मां के आंसू भी देखिए सर,
0: लास्ट लास्ट लास्ट
1: आंखों के आंसू भी देख लीजिए आप सर।
0: नहीं हम अब
1: आज भी और हो रही है, आज भी हो रही है,
0: आपका
1: बच्चे का जान खतरे में है सर,
0: आप सीधा जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, लास्ट में
1: नहीं, ये सही है
0: सर, आपने
1: कुछ नहीं सोचेंगे,
0: आपने आपने आपने दलित कार्ड खेला है, आप सिंपथी कार्ड खेल रहे हैं, आप झूठ भी बोला है आपने कि आपने हाथ उठाया नहीं किसी पे, सब कुछ वीडियो पे है। आखिरी सवाल,
1: झूठ बोला, हम जो सिचुएशन है वो सही सही बताया है।
0: आखिरी सवाल, आखिरी सवाल,
1: आप पूछो कितना आखिरी सवाल पूछ रहे,
0: जब ये इंटरव्यू,
1: ये नहीं मानेंगे कि हमने महिला के ऊपर हाथ उठाया, हम डॉक्टर का इज्जत करते हैं, कोरोना में उन्होंने बहुत बड़ा
0: कितना इज्जत है, कितना इज्जत है,
1: हम उसका नाम भी ले सकते हैं,
0: कितना इज्जत है
1: डॉक्टर बड़ेकर मैडम ने 200 पेशेंट
0: सब लोग देखे हैं, मैं लूप पे प्ले करूंगा इस वीडियो को ताकि डोंबिवली के लोग, कल्याण के लोग, मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोग बार बार देखे कि आपने क्या किया है। वो सब छोड़िए, आखिरी सवाल, क्या आपको अफसोस है, क्या आप माफी मांगेंगे डॉक्टर वैभव?

0: श्रुति, आप सर, मैं सीधा सवाल, क्या आपको अफसोस है, क्या आप माफी मांगेंगे? नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
1: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है। हमने कोई लेडी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, ना कभी उठाऊंगा।
0: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर, अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही जाएंगे आप डॉक्टर्स के ऑफिस के में जाके आपके गुंडों के साथ आप
1: आगे जाके ऐसा आप किसी पेशेंट के ऊपर नौबत। सर सुनिए, अभी भी हम कॉर्पोरेशन में है और आगे चल के ऐसा नौबत पेशेंट के ऊपर नहीं आना आएगा, ऐसा काम हम करेंगे इधर।
0: तो आप करेंगे,
1: हुआ है एक तरफ से ताली नहीं बजती है सर,
0: तो आप दो साइड से ताली नहीं बजती, लेकिन
1: ऐसा
0: आप
1: काम करेंगे कि ऐसा नौबत ही नहीं आके,
0: याद रखिए
1: पेशेंट के लिए बेड के वजह से
0: रमेश
1: बाहर जाना पड़े।
0: आपके पास पिछले भी केसेस हैं,
1: जो
0: पुराने भी केसेस हैं,
1: बारिश का मौसम है,
0: पहली बार नहीं,
1: बारिश का मौसम है सर, बारिश का मौसम है, बम्बई में गाड़ी नहीं जा सकते, पूरा बम्बई कल डूब चुका था, पूरा बम्बई गवर्नमेंट सरकार ने बंद किया था, स्कूल बंद था, कॉलेज बंद थे, ट्रेन बंद थी, सब रास्ते बंद थे, कैसे जा सकते थे साइड हॉस्पिटल
0: सर,
1: जान को खतरा था सब। और जब
0: रमेश जी बॉटम लाइन ये
1: बात मालूम पड़ी सीओ ने आधे घंटे में ये प्रॉब्लम,
0: लोग आपसे आप पे
1: 5 घंटे में ये डॉक्टर
0: लोग आप पे हंस रहे हैं सर,
1: सॉल्व हो रहा होगा इसके बाद,
0: लोग आप पे हंस रहे हैं, ये ऑलमोस्ट कॉमेडी बन गया है अब सर, क्योंकि पूरा पूरा वीडियो है उनके सामने,
1: मेरे को आनंद है,
0: पूरा वीडियो सामने है और आप बोल रहे हैं
1: दो जान बच,
0: लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं,
1: उसका हमको आनंद है सर,
0: लास्ट पॉइंट पे बोलना चाहता हूं, ये आपकी सरकार है सर, आप रूलिंग पार्टी के कॉर्पोरेटर हो, आप कानून के अंदर काम करने के लिए चुने हुए हो, आपने कानून के अंदर काम नहीं किया है, किसी पे हाथ उठाया, गुंडों को लेकर हिंसा फैलाया एक हॉस्पिटल के अंदर, ये है बॉटम लाइन, ये है बॉटम लाइन। और आप एनडीटीवी पे बोल रहे हो कि आगे जाके भी ऐसे ही करोगे,
1: इतने बड़े पत्रकार
0: सर,
1: अगर डॉक्टर का ही साइड लेके आम पब्लिक के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे तो जनता किधर जाएगी सर, आप ही तो चौथा कॉलम इस सब,
0: नहीं वो आपने फिर से एक नैरेटिव फैलाया है,
1: गरीब आदमी के बारे में नहीं सोचेंगे, खाली डॉक्टर के घमंड के बारे में सोचेंगे
0: सर, अगर गरीब सर, अगर गरीब अगर दलित
1: जो रियलिटी है,
0: सुनिए
1: आप दिखाना,
0: अगर दलित लोगों, गरीब लोगों को बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, अगर बारिश हो रही है और लोगों को दिक्कत है मुंबई में, वो आपकी सरकार की गलती है, आपकी सरकार से सवाल कीजिए, उन पर हाथ उठाइए, डॉक्टरों पर मत,
1: टाइम नहीं था ना सर, उसका जान के पास थी, वो सोचने का टाइम,
0: आपकी आपकी बहादुरी, आपकी बहादुरी वहीं पे खत्म हो जाता है जहाँ पे आपके सरकार पर सवाल उठने का टाइम आता है।
1: उसके लिए उपाय था सर, सर उसके लिए उपाय था, लेकिन ये डॉक्टर ने नहीं किया, सीएमओ को बताया तो उसने आधे घंटे में सब प्रॉब्लम सोल्व किया, इसके बारे में भी बोलिए आप,
0: आपने
1: पांच घंटे में उन्होंने क्यों नहीं, ये दो डॉक्टर ने सोल्व किया ये प्रॉब्लम,
0: आपने आपने अफसोस,
1: पांच घंटे में डॉक्टर ने,
0: लेकिन आपने, लेकिन आपने
1: साधिया मैडम
0: आगे जाके भी, लास्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट
1: किया सर,
0: फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट रमेश जी,
1: पूरा प्रॉब्लम सोल्व किया कॉर्पोरेशन के रूल के मुताबिक, ये इसके
0: आखिरी मौका देख रहा हूँ
1: मैडम के ऊपर मैं अभिनंदन करता हूँ, उसको हाँ उसको साधिया मैडम को मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आधे घंटे में ये प्रॉब्लम सोल्व किया, लेकिन ये डॉक्टर ने पाँच घंटे में प्रॉब्लम सोल्व नहीं किया, ना साधिया मैडम को हमको फ़ोन नंबर दिया, ना हमारा फ़ोन अटेंड किया, अगर
0: एक लास्ट मौका देता हूँ,
1: नौबत ही नहीं आती थी,
0: उधर
1: जाने का एक ही बात था, साइन लेके जाओ, साइन लेके जाओ,
0: इसके बाद
1: आपका रुक आउट है करके
0: रमेश जी,
1: ऐसा लेके जाएगा ऐसा हम बोले तो बोलते हैं
0: आपके बहुत एक्सक्यूजेस है सर, आप बहुत
1: ये भी नए है डॉक्टर,
0: लास्ट पॉइंट
1: सर, ये डॉक्टर
0: सुन लिया सर आपके जो एक्सक्यूजेस है, बहाने हैं, हमने सुन लिया,
1: उसने गाइडेंस लेना जरूरी था,
0: लास्ट पॉइंट,
1: नहीं
0: आपको एक आखिरी मौका,
1: अगर पब्लिक
0: आखिरी मौका, आखिरी मौका दे रहा हूँ, आखिरी मौका,
1: लेकिन
0: आखिरी मौका दे रहा हूं आपको,
1: पत्रकार
0: आखिरी मौका दे रहा हूं
1: सरकार
0: आपको। क्या आप क्या
1: पत्रकार
0: क्या
1: सरकार को सवाल पूछ सकते हैं आप? अगर गलत साइड लेंगे तो कैसा होगा सर? पब्लिक का साइड भी लीजिए ना सर।
0: आखिरी आखिरी आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, मैं
1: रो नहीं रहा हूँ, मेरा पब्लिक पानी आ रहा है।
0: मैं पब्लिक और सिटीजंस के लिए बोलता हूँ हमेशा, इसलिए मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, आखिरी मौका देता हूँ रमेश जी। आप एक कॉर्पोरेटर हो रूलिंग पार्टी के, आखिरी मौका
1: सवाल पूछे ना उनका,
0: आखिरी मौका। आपके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता
1: सर,
0: आपके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं नहीं, मेरी लास्ट लास्ट पॉइंट मेरे सुनिए,
1: आंसू नहीं है, आखिरी आंख का प्रॉब्लम है, मेरा आंख का प्रॉब्लम है, आंसू नहीं है मेरे।
0: ठीक है, मैं आपको लास्ट मौका दे रहा हूँ, लास्ट मौका दे रहा हूँ। जो कुछ भी हुआ है, क्या आपके
1: आपके बारे में बोलिए ना सर, बच्चों पेशेंट के बारे में,
0: आखिरी मौका, आखिरी मौका,
1: अगर
0: आखिरी मौका, आखिरी मौका,
1: पेशेंट के बारे में बोलिए ना सर,
0: आखिरी मौका
1: के बारे में सवाल पूछेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा
0: सर, आखिरी मौका, आखिरी मौका। क्या आप अफसोस एक्सप्रेस करेंगे, माफी मांगेंगे डॉक्टर्स और नर्सेस से? आप नेशनल टीवी पे, आखिरी मौका, क्या आप माफी मांगेंगे, अफसोस एक्सप्रेस करेंगे कि ऐसे नहीं
1: मांगूंगा, लेकिन हमारे कॉर्पोरेशन में ऐसी घटना होती है, इसका हमको बहुत अफसोस होता है, और आगे चल के हम हॉस्पिटल में पूरा सुधारने का प्रयास करेंगे कि ये नौबत नहीं आएगी।
0: डॉक्टर वैभव, डॉक्टर वैभव, डॉक्टर श्रुति को
1: करेंगे,
0: जिस पर आपने हाथ उठाया
1: प्रशिक्षण देंगे,
0: उससे माफी माफी मांगेंगे आप
1: पेशेंट के साथ?
0: डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर वैभव और नर्सेज पर आपने जो हाथ उठाए, क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
1: प्रशिक्षण हम हमारे
0: नहीं मांगेंगे
1: देंगे सर हम।
0: ओके, आई वांट टू लीव इट टू द पीपल ऑफ महाराष्ट्र नाउ,
1: टू द कैंप लगाएंगे,
0: टू द पीपल ऑफ द रूलिंग पार्टी इन महाराष्ट्र नाउ, टू सी हाउ अ शेमलेस कॉर्पोरेटर सेज, we will see going forward what happens, basically
1: the short point is हमारे से गलती हुई रहेगी तो हम भी माफी मांगेंगे सर।
0: ओके, आप माफी मांग रहे हैं,
1: चाहिए दोनों तरफ से भी।
0: हां, an FIR has been lodged against रमेश मात्रे after NDTV's coverage,
1: तो हम भी माफी मांगते हैं।
0: बिल्कुल ठीक है, तो इसी इसी नोट पर हम एंड करते हैं। रमेश मात्रे जी, आपने माफी मांगी है,
1: डॉक्टर का गलती हुआ है तो हम उसको माफ करेंगे ये बोल के कि वापस ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारे से गलती हुई रहेगी तो हम भी माफी मांगते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। चलो
0: ओके, चलो इसी पे एंड करते हैं। रमेश मात्रे
1: ऑफ द गरीबों का बात सुने
0: सर, हम हमारा पूरा काम पब्लिक के लिए है सर,
1: मेरा कहना बोल कहना हाँ, आप भी पब्लिक के लिए अगर बोलेंगे तो बहुत खुशी होगी सर, धन्यवाद।
0: वो हमारा काम है सर, हम हमारा काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो दैट वाज द शिंदे सेना कॉर्पोरेटर रमेश मात्रे, एज यू सी ट्रैपिंग हिमसेल्फ इन हिज ओन कॉन्ट्रडिक्शंस, वांटिंग टू रिग्रेट, बट आल्सो द गुंडा इन हिम कमिंग आउट, दैट इज द रियलिटी ऑफ इट, एंड दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट एनडीटीवीज कवरेज हैज एक्चुअली डन। एन FIR वाज लॉज्ड मिनट्स आफ्टर एनडीटीवी पिक्ड अप द स्टोरी last evening on prime time, without which and even an FIR would not have been lodged. We had a doctor from that hospital live with us from the police station, as a matter of fact. These are ruling party persons raising their hands against citizens, and that's the reason why there is so much outrage. Back to the studio.
2: Shiv, as always, thank you so much. Well, you've heard, speaking to NDTV, Ramesh Mahatre has denied assaulting any woman doctor or nurse, despite the visuals we have shown you. He claims he intervened to save the life of a pregnant woman, says he respects women, and maintains that while he snatched a phone from a doctor's hand during the altercation, he did not physically assault any member of the medical staff. We'll continue to track how this probe progresses. For now, we're slipping into a quick break. Back in a moment.

0: That is his opinion. My simple thing is that this man perhaps should be arrested. He should be dealt with the strictest of punishment under the law, under the Constitution of India.
1: Right. Thank you so much for joining us with all those details. So here we have a reaction coming about. Of course, Clyde Crastow there asking for stricter punishment when it comes to action against a medical fraternity, because do remember they're the ones who are saving lives. And how do they save lives if they're fearing for their own life because of the reaction? Do remember that in hospitals there can be situations that can go out of hand and people can have somewhat of a reaction. But how does the government of not just Maharashtra but the central government also ensure that these incidents don't take place in other states and in other cities as well? Now, NDTV, of course, has grilled the, when we talk about the Sena cooperator who assaulted this woman doctor, two fellow physicians, three nurses in Dombivli's government hospital. Ramesh Mahatre, he has denied assaulting any woman doctor or nurse. He claims he intervened to save the life of a pregnant woman, says he respects women, and maintains that while he snatched a phone from a doctor's hand during the altercation, he did not physically assault any member of the medical staff. This comes after there's been a video of his that's gone completely viral of assaulting doctors and nurses, this doctor and nurses in that hospital in Dombivli. The incident took place at a government hospital. There's CCTV footage that shows a confrontation that took place inside the hospital, and the man seen leading the group has been identified as Shiv Sena cooperator Ramesh Mahatre. Now, we also have NDTV's managing editor, my colleague Shivarur, who grilled the Shiv Sena cooperator, but he continued to remain defiant. Let's listen in.
2: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mahatre, cooperator of the ruling Shiv Sena Shinde faction in Maharashtra, who was caught on CCTV camera along with his accomplices thrashing lady doctors and nurses inside a hospital in Dombivli Kalyan. Ramesh, NDTV se baat karne ke liye dhanyawad, lekin mera pehla seedha sawal aapse hai, Ramesh ji. Ye jo video jo samne aaya hai, jo NDTV ne break kiya hai. Seedha sawal hai, Ramesh ji. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? लेडी डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए क्या आपको शर्म नहीं आती?
3: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है, लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया।
2: वीडियो तो सामने है सर, वीडियो तो सामने है हमारे।
3: नहीं, उसका फोन कान से हटाया हमने
2: सर। वीडियो
3: फोन कान से हटे, फोन पे बात कर रहे थे, हमसे बात ही नहीं कर रही थी वो।
2: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठा,
3: उसका फोन के ऊपर मारे, फोन रखो।
2: आपको आपको किसने
3: नहीं नहीं नहीं नहीं
2: भी कभी नहीं, किसी पे भी हाथ
3: उठा हमारा, हम शिवसैनिक है, लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते।
2: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर,
3: वो जो बता रहे हैं, वो जो बता रहे
2: पे आपने हाथ रहा होगा,
3: लेकिन वो जो
2: गुंडे
3: फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया,
2: और उसका अलग नहीं किया आपने, उसके हाथ और गले
3: हमसे बात नहीं कर रही थी
2: ये
3: वो।
2: वीडियो पे आ रहा है, ये वीडियो पे आ रहा है, रमेश जी आप झूठ नहीं, नहीं बोल सकते हैं, आप झूठ नहीं, नहीं बोल
3: गले
2: सकते
3: पे नहीं मारा है, कान में फोन रखा था, फोन के ऊपर हमने झटका दे के फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से।
2: रमेश जी
3: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन।
2: मेरा सवाल सुनिए, चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा, आप फोन हटा रहे थे, आप एक कॉर्पोरेटर हो, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का, आपको किसने हक दिया?
3: हमको हक हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया, जहां भी अन्याय हो वह आप अपना तरीका दिखा सकते हो,
2: हाथ उठाने का हक बालासाहेब
3: हमारे भी
2: आपको
3: वहां एक।
2: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
3: अन्याय के खिलाफ कुछ भी नागरिक, हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया। आप
2: सर ये वीडियो तो देखिए,
3: क्या वो डॉक्टर पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या? देखने दो ना पब्लिक को, कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था।

0: तो क्या हुआ हो रहा था वो सुने हमारे
1: 20 सेकंड, मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, आप बताइए आपने आपने ऐसे महिला डॉक्टर और नर्सेस पे हाथ क्यों उठाया? 20 सेकंड में बताइए,
0: दो मिनट दीजिए
1: बताइए, उसके बाद मैं सवाल करूंगा आपसे।
0: हाँ, वहाँ एक लेडी डॉक्टर प्रेग्नेंट थी, लेडी डॉक्टर एक लेडी थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी डे पूरा हुआ था, उसको लेबर पेन चालू हुआ था, उसका पेट में वो बच्चों ने टूल पास किया था, क्रिटिकल कंडीशन थी, और उसको वहाँ बेड नहीं था करके उसको साइन भेज रहे थे। पूरा मुंबई बारिश में डूब गया था, कॉलेज बंद था, स्कूल बंद था, ऑफिसेज बंद थे, पूरा ट्रैफिक जाम था, और बारिश इतना था कि डोंबिवली से निकलने के लिए 3 घंटा लगता था, और उसके पास 10 मिनट भी नहीं था, और ना वो हमारे CMO को फ़ोन लगा रहे थे, ना हमको नंबर दे रही थी, तो हम क्या करें, नंबर नहीं दे रहे थे करके वो डॉक्टर के ऊपर
1: जो महिला डॉक्टर पे हाथ उठाया,
0: फिर डॉक्टर ने जो नंबर
1: दिया तो महिला डॉक्टर
0: नहीं उठाया हमने।
1: अगर बेड अवेलेबल नहीं है, अगर बेड अवेलेबल नहीं है क्या आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं फोन कर सकते? हाँ। आप एक बेचारे डॉक्टर पे क्यों हाथ
0: नहीं है,
1: नर्सेस और डॉक्टर्स पे क्यों हाथ उठा रहे? आपका ही सरकार है रमेश,
0: बेड अवेलेबल नहीं है ना,
1: क्यों नहीं फोन करते?
0: सुनिए मेरा बात भी सुनिए जरा, अगर अगर बेड अवेलेबल नहीं है ना, तो सर एक कानून है महापालिका का कि अगर अपने पास जो सुविधा नहीं है तो
1: अरे सर,
0: सुविधा लेके पेशेंट को
1: आपने कानून देना,
0: बराबर,
1: इसके इसके लिए बहुत तालियां आपको कि आपने कानून का शब्द
0: राहत देना, और
1: कानून का शब्द
0: यही बात हम उनसे बोल रहे थे कि आप में तो हाँ ऐसा है हमारे महापालिका में, और कई बार हमने किया है क्योंकि मेरा वार्ड में वो हॉस्पिटल आता है तो वहाँ मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, पूरा ग्रामीण कल्याण ग्रामीण लोकसभा वार्ड है ना, वहाँ से बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं, और ऐसा कई मामले हमने सॉल्व किया है, लेकिन ये नए डॉक्टर है बहुत घमंडी है, और उन्होंने मैडम का नंबर नहीं दिया CMO का हमारा, फिर से उसको वो जो घटना घटी ना, वो लेडी के ऊपर हाथ हमने नहीं उठाया और कभी ना उठाएंगे, लेकिन जो डॉक्टर के साथ हुआ ना तभी हमको नंबर मिला, और हमारे
1: रमेश जी,
0: सुनिए बात मेरा सर मेरा बात सुनिए,
1: सुन लिया जो आप बोल रहे हैं, आप मैंने सुन लिया, आप बेसिकली ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे कि आप एक जननायक हो, ठीक है, आप एक हीरो हो, आपने एक नायक हो जिसने नागरिकों का जो का जो कंसर्न डिमांड थे, आपने एक महिला डॉक्टर और नर्स पर हाथ उठा के आपने अपना फर्ज निभाया है, ये आप बोल रहे हैं। मैं
0: ये सरासर झूठ है, हमने किसी नर्स के ऊपर और किसी नहीं नहीं सर, एक कैमरा में दिखता रहेगा, लेकिन मैं फोन हटाया वो तो आप
1: रमेश जी आपके पार्टी आपके सरकार आपके समर्थकों को शर्मिंदा मत कीजिए, आपने जो किया है वो पूरा सामने है, सब देख रहे हैं NDTV पर, ये वीडियो सामने है, आपका हाथ दिख रहा है,
0: नहीं
1: जो गुंडे हैं आपके साथ है,
0: नहीं, मैं
1: तो
0: फोन के ऊपर उसके फोन के ऊपर फोन हटाया झटके से,
1: एक रजिस्टर लेके किसी के सर पे मारा है,
0: झटके से फोन हटाया,
1: फोन पे मारा है,
0: फोन पे मत रहो, बिजी रहो, पेशेंट के बारे में सोचो, यही बोल रहा था, बंबई कैसे जा सकते पेशेंट, बंबई कैसा पहुंच सकते हैं साइन हॉस्पिटल?
1: फिर से मैं पूछता हूँ आपसे आपको हक किसने दिया?
0: बोलो
1: जाने का, आप ऐसे हॉस्पिटल जाके हाथ उठा के किसी पर मारना, फोन साइड पे करना, जो भी आप बोल रहे हैं, आपने हिंसा इस्तेमाल किया,
0: तो क्या आप डॉक्टर को परमिशन दिया है? डॉक्टर को परमिशन दिया है उधर ही जगह पे मारने का?
1: इधर उधर मत कीजिए
0: डॉक्टर को किसने हक दिया पेशेंट के केयर ना करना? डॉक्टर किस लिए होता है? भगवान नहीं आ सकते इसके लिए भगवान ने डॉक्टर बनाया?
1: गुंडे हो आप, कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, ये तो साफ कर दीजिए, आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो? अगर आप कॉपरेटर हो तो कानून के अंदर ही काम करना पड़ेगा आपको,
0: आप
1: गुंडे कैसे बन सकते हो?
0: सीधा जवाब देगा,
1: मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे,
0: जान बचाने के लिए
1: जो आपने जो किया है,
0: मेरे को गुंडे लगे
1: सर, अगर डॉक्टर गुंडे है वो ठीक है, आप नहीं कर सकते, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप रूलिंग पार्टी के कॉर्पोरेटर हो, आप कैसे कर सकते हैं ये सब? अगर किसी ने बेड नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, अगर किसी ने किसी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया,
0: कुछ नहीं किया है,
1: आप पुलिस के पास जा सकते हैं।

0: And joining me live from Mumbai is Ramesh Bhatre, co-operator of the ruling Shiv Sena Shinde faction in Maharashtra, who was caught on CCTV camera along with his accomplices thrashing lady doctors and nurses inside a hospital in Dombivli Kalyan. Ramesh, NDTV se baat karne ke liye dhanyawad, lekin mera pehla seedha sawal aapse hai, Ramesh ji. ये जो वीडियो जो सामने आया है जो एनडीटीवी ने ब्रेक किया है, सीधा सवाल है रमेश जी, ये है कि क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए? क्या आपको शर्म नहीं आती?
1: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है, लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया।
0: वीडियो तो सामने है सर, वीडियो तो सामने है हमारे।
1: नहीं, उसका फोन कान से हटाया हमने
0: सर। वीडियो
1: फोन कान से हटे, फोन पे बात कर रहे थे, हमसे बात ही नहीं कर रहे थे वो।
0: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठाने
1: का? फोन के ऊपर फोन रखो
0: आपको।

0: आपको किसने
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं कभी नहीं
0: किसी पे भी हाथ
1: उठा हमारा हम शिवसैनिक है, लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते।
0: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर डॉक्टर
1: वो जो बता रहे हैं वो जो बता रहे
0: वैभव पे आपने हाथ उठाया होगा,
1: लेकिन वो जो
0: गुंडे आपके पास थे
1: फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया
0: नहीं किया आपने उसके हाथ और गले
1: हमसे बात नहीं कर रही थी।
0: ये वीडियो पे आ रहा है, ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप झूठ नहीं बोल सकते।
1: गले पे नहीं मारा है, कान में फोन रखा था, फोन के ऊपर हमने झटका दे के फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से।
0: रमेश जी
1: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन।
0: मेरा सवाल सुनिए। चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा, आप फोन हटा रहे थे, आप एक कॉर्पोरेटर हो, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का? आपको किसने हक दिया?
1: हमको हक हमारे पार्टी के बाल साहब ठाकरे ने दिया। जहां भी अन्याय हो वहां आप अपना तरीका दिखा सकते हो।
0: हाथ उठाने का हक बाला साहब
1: हमारे भी
0: आपको
1: वहां एक
0: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
1: अन्याय के खिलाफ कुछ भी हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया। आप
0: ये वीडियो तो देखिए
1: क्या वो डॉक्टर एक पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या? देखने दो ना, पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था, वहाँ क्या हो रहा था वो सुने हमारे।
0: 20 सेकंड मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, आप बताइए कि आपने ऐसे महिला डॉक्टर और नर्सेस पे हाथ क्यों उठाया? 20 सेकंड में बताइए।
1: दो मिनट दीजिए,
0: उसके बाद मैं सवाल करूंगा।
1: वहाँ एक लेडी डॉक्टर प्रेग्नेंट थी, एक लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी डे पूरा हुआ था, उसको लेबर पेन चालू हुआ था, उसका पेट में वो बच्चों ने टूल पास किया था, क्रिटिकल कंडीशन थी और उसको वहाँ बेड नहीं था करके उसको साइन भेज रहे थे। पूरा मुंबई बारिश में डूब गया था, कॉलेज बंद था, स्कूल बंद था, ऑफिसेज बंद थे, पूरा ट्रैफिक जाम था और बारिश इतना था कि डोंबिवली से निकलने के लिए 3 घंटा लगता था और उसके पास 10 मिनट भी नहीं था और ना वो हमारे CMO को फ़ोन लगा रहे थे, ना हमको नंबर दे रही थी, तो हम क्या करें? नंबर नहीं दे रहे थे करके वो डॉक्टर के ऊपर
0: जो महिला डॉक्टर पे हाथ उठाया,
1: फिर डॉक्टर ने जो नंबर
0: महिला डॉक्टर
1: नहीं उठाया हमने।
0: अगर बेड अवेलेबल नहीं है क्या आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं फोन कर सकते?
1: हाँ।
0: आप एक बेचारे डॉक्टर पे क्यों हाथ उठा रहे? नर्सेस और डॉक्टर्स पे क्यों हाथ उठा रहे? आपका ही सरकार है रमेश जी,
1: बेड अवेलेबल नहीं है ना,
0: क्यों नहीं फोन कर
1: सकते? सुनिए मेरा बात भी सुनिए जरा, अगर अगर बेड अवेलेबल नहीं है ना तो सर एक कानून है महापालिका का कि अगर अपने पास जो सुविधा नहीं है तो
0: अरे वाह सर,
1: सुविधा लेके पेशेंट को
0: आपने कानून डाला
1: बराबर,
0: इसके लिए बहुत तालियां आपको कि आपने कानून का शब्द
1: राहत देना और
0: कानून का शब्द
1: यही बात हम उनसे बोल रहे थे कि आप में हाँ तो हाँ ऐसा है हमारे महापालिका में और कई बार हमने किया है क्योंकि मेरा वार्ड में ही वो हॉस्पिटल आता है तो वहाँ मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, पूरा ग्रामीण लोकसभा वार्ड है ना वहाँ से बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं और ऐसा कई मामले हमने सॉल्व किया है, लेकिन ये नए डॉक्टर है बहुत घमंडी है और उन्होंने मैडम का नंबर नहीं दिया CMO का हमारा। फिर से वो जो घटना घटी ना वो लेडी के ऊपर हाथ हमने नहीं उठाया और कभी ना उठाएंगे, लेकिन जो डॉक्टर के साथ हुआ ना तभी हमको नंबर मिला और हमारे सुनिए बात मेरा सर मेरा बात सुनिए।
0: सुन लिया जो आप बोल रहे हैं आप, अब मैंने सुन लिया। आप बेसिकली ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि आप एक जननायक हो, ठीक है, आप एक हीरो हो, आपने एक नायक हो जिसने नागरिकों का जो का जो कंसर्न डिमांड थे, आपने एक महिला डॉक्टर और नर्स पर हाथ उठा के आपने अपना फर्ज निभाया है, ये आप बोल रहे हैं। मैं आपसे
1: सरासर झूठ है, हमने किसी नर्स के ऊपर और किसी नहीं नहीं सर एक कैमरा में दिखता रहेगा, लेकिन मैं फोन हटाया वो तो आप
0: रमेश जी आपके पार्टी आपके सरकार आपके समर्थकों को शर्मिंदा मत कीजिए, आपने जो किया है ये पूरे पूरा सामने है, सब देख रहे हैं एनडीटीवी पर, ये वीडियो सामने है, आपका हाथ दिख रहा है,
1: नहीं,
0: जो गुंडे हैं आपके साथ है,
1: नहीं, मैं तो फोन के ऊपर, उसके फोन के ऊपर फोन हटाया झटके से,
0: एक रजिस्टर लेके किसी के सर पे मारा है,
1: झटके से फोन हटाया,
0: फोन पे मारा है,
1: फोन पे मत रहो, बिजी रहो, पेशेंट के बारे में सोचो, यही बोल रहा था, बंबई कैसे जा सकते है, पेशेंट बंबई कैसा पहुंच सकता है, साइन हॉस्पिटल।
0: फिर से मैं पूछता हूं आपसे, फिर से मैं पूछता हूं आपसे, आपको हक किसने दिया?
1: बोलो बोलो, बोलिए जाने का।
0: आप ऐसे हॉस्पिटल जाके हाथ उठा के किसी पर मारना, फोन साइड पे करना, जो भी आप बोल रहे हैं, आपने हिंसा इस्तेमाल किया।
1: तो क्या आप डॉक्टर को परमिशन दिया है? डॉक्टर को परमिशन दिया है उधर ही जगह पे मारने का?
0: इधर उधर मत कीजिए, इधर उधर मत।
1: डॉक्टर को किसने हक दिया पेशेंट के केयर ना करना? डॉक्टर किस लिए होता है? भगवान नहीं आ सकते इसके लिए, भगवान ने डॉक्टर बनाया।
0: गुंडे हो आप, कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, ये तो साफ कर दीजिए, आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो? अगर आप कॉपरेटर हो तो कानून के अंदर ही काम करना पड़ेगा आपको।
1: आप
0: गुंडे कैसे बन सकते हो?
1: सीधा जवाब देगा,
0: मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे,
1: जान बचाने के लिए
0: आपने जो किया है,
1: मेरे को तो उधर डॉक्टर गुंडे।

0: जा सकते हो, आप रूलिंग पार्टी के कॉम्पिटिटर हो, आप हाथ कैसे उठा सकते हो आप नागरिक पर?
1: अगर ये हम ऐसा नहीं करते, जो अगर हम फोन के फोन नंबर मैडम का लिया और मामला आधा घंटे में सोल्व हुआ, डिलीवरी भी हो गया, मैडम ने शिफ्ट किया पेशेंट को, हमारे सीएमओ ने मतलब मैडम उसके साथ बात तो करने के बाद आधा घंटे में मामला कैसा सोल्व हो गया? और ये 5 घंटे से ये क्यों उसको रखड़ा रहे थे?
0: रमेश जी,
1: शर्मिंदा मत, डॉक्टर
0: आप बेसिकली
1: रखड़ा के रखा था ना, कोई डिसीजन ले रहा था,
0: तो फिर आप ये बोल रहे हैं
1: और इसके लिए फिर क्या कर सकते थे हम लोग?
0: मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हो एनडीटीवी पर कि आगे जाके भी अगर किसी को बेड नहीं मिला,
1: लड़की थी
0: आगे, सर सर सर
1: डिलीवरी डेट पे आ गया था,
0: सर ये सब
1: लेबर पेन शुरू हुआ था, ये सब बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे।
0: डोंट प्ले द कास्ट कार्ड, कम्युनिटी कार्ड, ये सब उसके पीछे मत छुपिए आप। दलित कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, उसमें
1: नहीं नहीं, हम उसके ऊपर स्टिकअप रहेंगे सर।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: हम उसके ऊपर स्टिकअप रहे, हम पब्लिक
0: हम मूर्ख नहीं है,
1: हमको चुन के
0: दिया
1: डॉक्टर ने, चुन के नहीं दिया,
0: आपको नहीं जाने देंगे,
1: नहीं हमको पब्लिक ने चुन के दिया है सर।
0: आपको
1: सर सर
0: सवाल सुनिए,
1: चुन के दिया,
0: सवाल सुनिए,
1: लड़ेंगे ना
0: रमेश माथे
1: और डॉक्टर का, तो हम सवाल सम्मान करते हैं कि कोरोना के सीजन में कोरोना का
0: आपका जो सम्मान है डॉक्टर के लिए, मैंने देखा
1: बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया
0: के लिए,
1: जो हम जिसको हम कभी भूलेंगे नहीं,
0: लेकिन ये डॉक्टर्स के लिए सम्मान जो है आपके आपके पास
1: बेकार था,
0: साफ साफ
1: हमारा पेशेंट मर सकता था उधर जगह पे।
2: That was NDTV drilling the slapper Sena Chowk, Shinde Sena co-operator, but he remains defiant. In fact, says that he did not attack the doctor and that now we have the Sena there, the Shiv Sena, promising action will be taken even against their own. With that, we're slipping into a short break. Back with a whole lot more on the other side.

0: Because he's someone who understands at least, you know, the condition in which medical practitioners, especially in government sectors, in government hospitals work, the kind of workload they take on daily and the kind of circumstances they put up with, including pressures from patients' families and also, in this case, rowdy politicians who believe that they have the right to assault someone if they're, you know, if what they're saying is not adhered to. And in this case, even go as far as assault a woman doctor. Obviously, you can see him lunging at her. The phone falls. It's all on camera, and therefore, he cannot deny. Because if it had not been on camera, I'm sure there were going to be denials.
1: Absolutely, and that is, I think, the biggest evidence against the corporator, who remains in denial despite all the proof, mounting proof against him, and with the opposition in the state wanting action. Now, NDTV's managing editor Shiv Arur has grilled the Shiv Sena corporator, who remained defiant about his actions. Listen in to an excerpt from that conversation.
2: ये जो वीडियो जो सामने आया है जो एनडीटीवी ने ब्रेक किया है सीधा सवाल है रमेश जी ये है कि क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए क्या आपको शर्म नहीं आती
3: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया
2: वीडियो तो सामने है सर वीडियो तो सामने है हमारे
3: नहीं उसका फोन कान से हटाया हमने
2: सर वीडियो
3: फोन कान से हटे फोन पे बात कर रहे थे हमसे बात ही नहीं कर रही थी वो
2: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठा
3: उसका फोन के ऊपर मारे फोन रखो
2: आपको आपको किसने
3: नहीं नहीं नहीं नहीं
2: नहीं कभी नहीं किसी पे भी हाथ
3: हमारा हम शिवसैनिक है लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते
2: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर
3: वो जो बता रहे हैं वो जो बता रहे
2: हैं पे आपने हाथ रहा होगा
3: लेकिन वो जो
2: गुंडे
3: वो जो फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया
2: और उसका अलग नहीं किया आपने उसके हाथ और गले
3: हमसे बात नहीं कर रही थी
2: ये
3: वो
2: वीडियो पे आ रहा है ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी आप झूठ नहीं बोल सकते हैं आप झूठ नहीं बोल
3: गले पे नहीं मारा है कान में फोन रखा था फोन के ऊपर हमने झटका दिया के फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से
2: रमेश जी
3: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन
2: मेरा सवाल सुनिए चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा आप फोन हटा रहे थे आप एक कॉर्पोरेटर हो आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का आपको किसने हक दिया
3: हमको हक हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया जहां भी अन्याय हो वहां आप अपना तरीका दिखा सकते हो
2: हाथ उठाने का हक बालासाहेब
3: हमारे भी
2: आपको
3: वहां एक
2: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
3: अन्याय के खिलाफ कुछ भी
2: नागरिक
3: हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया आप
2: सर ये वीडियो तो देखिए
3: क्या वो डॉक्टर पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या देखने दो ना पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था
2: सर आप जो
3: हमको
2: काम करते हैं
3: बात करने
2: आपका काम है सर
3: हम आते ही नहीं अगर हमारा फोन उठा दे तो हम आते ही नहीं सर उधर
2: तो आपके पास
3: फोन
2: होता था
3: अगर हमारा फोन लेते हैं डॉक्टर तो हमको आने का जरूरत ही नहीं पड़ता था
2: अफसोस बिल्कुल नहीं है ये हिंसा इस्तेमाल करने का कोई अफसोस ही नहीं है रिग्रेट नहीं है क्या आप माफी मांगेंगे डॉक्टर श्रुति डॉक्टर वैभव जो दो नर्सेस थे वहां पे क्या आप माफी मांगेंगे उनसे FIR दर्ज हुई है आपके खिलाफ आपके गुंडों के खिलाफ भी दर्ज हुई है
3: भी दलित थी और मेरे को मैं सर सुनिए
2: सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अंडर द लॉ वायलेंस हैज बीन यूज्ड
3: नहीं फर्क पड़ता है मेरी बात तो सुनो वो लेडी डॉक्टर थी ना सर लेडी डॉक्टर थी ना वो भी दलित समाज है और मेरे को अभिमान है कि दलित समाज की लेडी डॉक्टर बनती है एक लड़की डॉक्टर बनी है हमारे हॉस्पिटल में काम कर रहे उसके लिए मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसके लिए
2: लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप ये दलित कार्ड प्ले कर रहे हो
3: अभी मारूंगा
2: आप कुछ कागज से पढ़ रहे हैं क्या सर
3: मैंने किया है
2: आप कुछ
3: एक दो
2: कुछ
3: जान बचे
2: पढ़ रहे
3: हैं हमारे वजह से दो जान बच गई है सर हमारे दो चार अफसोस है, हम एसएससी पास है
2: सर। ये तो साफ नजर आ रहा है कि आपके पास एक नैरेटिव मिल गया है, आपके पास एक नैरेटिव मिल गया है निकलने का। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपको, आप
3: और उसके माँ की जान बच गई है।
2: डॉक्टर श्रुति और डॉक्टर वैभव और दो नर्सेस जो हैं, जो जिसको आपने मारा है और आपके गुंडों ने मारा है, क्या आप माफी मांगेंगे? एनडीटीवी आप नेशनल चैनल पर हो ना लाइव हो, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे?
3: कार्यकर्ता थे सर, वो कार्यकर्ता थे हमारे पार्टी के, कार्यकर्ते थे
2: वो जो गुंडे हैं। ये विजुअल देखिए एनडीटीवी पर, ये रो रहे नर्सेस, ये नर्सेस और डॉक्टर्स रो रहे, उनकी आंखों में आंसू है सर। वो स्ट्राइक पर है अभी क्योंकि आपने हाथ उठाया उन पर,
3: तो सर उसके आंखों में आंसू है।
2: जो टीवी
3: और जो प्रेग्नेंट महिला थी वो क्या जानवर थी क्या?
2: क्या आगे जाके
3: आदमी नहीं
2: करेंगे आप? आगे जाके
3: नहीं था
2: ये सब
3: हमारे सीएम,
2: ये सब छोड़िए, आप जननायक नहीं हो सर। हाथ उठा के आप जननायक नहीं बनते हो, आप गुंडे ही हो। अगर आप हाथ उठाएंगे तो आप गुंडे ही हो, आप गुंडा आ जाएगा।
1: Maharashtra government has taken note of NDTV's coverage on the assault on a female doctor by the Shiv Sena co-operator Ramesh Bhatre. Shiv Sena MP Shrikant Shinde has also condemned the assault, saying such behaviour is unacceptable, confirming that a police case has been registered and assured that strict action will be taken. Shiv Sena MLA Sanjay Gaikwad, in fact, has defended the co-operator and said doctors are just after their salaries. Shiv Sena UBT MLA Aditya Thakre has targeted the Mahayuti government, questioning whether Chief Minister Devendra Fadnavis will tolerate Gundagiri, is what he said, of an ally, and demanded action against the co-operator. Congress has also slammed the Mahayuti government over the incident and demanded strict action.
4: लोकशाही प्रक्रिया में जिस तरह से अगर हम लोग काम करते हैं, तो काम करते समय अगर किसी से दिरंगाई होती है तो उसके लिए अपीलिंग अथॉरिटी है, कंप्लेनेंट अथॉरिटी है, उनके पास हम लोग जाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे तो सही रहेगा। हम अगर मारपीट पे आएंगे तो ये बात ठीक नहीं है। जैसा कि लोकशाही प्रक्रिया में हम लोग जबकि पॉलिटिकल वर्कर है तो हम लोगों के लिए बहुत सारी आचार संहिता रहती है, जिसका पालन करना ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। डॉक्टर्स को हम लोग अपील करेंगे, एक घटना घटी है तो उसके लिए जो कुछ कार्रवाई करनी चाहिए वो तो कार्रवाई होगी। बाकी अभी तो बारिश चल रही है, बारिश इतनी चल रही है कि डॉक्टर्स की ज़रूरत अभी हमें है, समाज को है, तो इसके लिए ज़रा थोड़ी सी धीरज रखिए। जो गलत है उसके लिए जो कुछ कार्रवाई होगी हो जाएगी।
5: हम लोग ने इसमें टीवी पे देखा नहीं, अभी साहब हमारे उसके ऊपर निर्णय ले लेंगे क्या बात हुआ है, किस तरह से ऐसा किया और क्यों किया, नहीं करना चाहिए, ये बात सही है, और हमारे साहब उसका एक्शन ले लें। वह सो हुआ
6: पीडी वगैरह,
5: लेकिन उसका भी एकनाथ शिंदे साहब कोई ना कोई तरीके निकले।
7: गुंडागर्दी को पार्टी नहीं होती, रंग नहीं होता, जात नहीं होती, ना कोई विषय में गुंडा कोई भी पार्टी का होने दो, किसी बड़े नेता का भाई होने दो। आप मुझे आज भी याद है, सन्माननीय सुधाकर राव नाईक जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों में ऐसा जेग में ठूस दिया, भाई ठाकुर याद आते होंगे ना आपको। तो मैं समझता हूँ कि गुंडे को कौन सी पार्टी है, उसको पार्टी में सदस्य बनना, इसमें कोई स्क्रूटिनी नहीं होती। तो कभी कभी कोई व्यक्ति गुंडागर्दी करता होगा तो कानून अपना काम करेगा, उसको पार्टी कहाँ पे है।
1: The mother of the patient whom the co-operator claimed to have protected has also defended him.
8: 6 बजे से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे, पाव पड़ रहे डॉक्टर के पास। अब वो भी लेडीज ही है ना, वो लेडीज के ऊपर लेडीज जान नहीं बचा सकती तो फिर क्या, वो डॉक्टर हम लोग भगवान मानते हैं, मैं बोलती भी हूँ उनको।
9: लेकिन जिस तरीके से दादा के कार्यकर्ता आते हैं, दादा खुद आते हैं, एक तरीके से हाथापाई होती है, वो कितना सही लगता है आपको?
8: सही नहीं है, गलत नहीं, सही भी नहीं है। वो लोग ने बहुत दादा के ऊपर गलत किया है, इसीलिए दादा ने बच्चा समझ के, तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे, बच्ची के जान जाएंगे, इसीलिए दादा ने उसको ऐसा मारा है, नहीं तो कुछ भी नहीं। इतना वो लोग ने बहुत लंबा खींच के लगाया है।
1: The Federation of All India Medical Association has expressed its strongest condemnation of the brutal assault on doctors, nurses and healthcare workers at the KDMC Shastri Nagar Hospital in Maharashtra.
10: That receiving complaints from Maharashtra and various other states of the country that there is no security. The security guards who works in a hospital are merely retired officials of paramilitary forces who are just

0: commuters, not only the commuters, but the people living in the Delhi NCR region. Behind me, you can see there is a problem which has been created due to the monsoon season. The waterlogging problem is an inevitable problem for a very long time. Year after year, we have been witnessing this. And right now, if you are coming from the side of the national capital, from Delhi, towards the Gurugram side, you can witness approximately 7 to 8 kilometer long jam over there. And right now, we have arrived at a Narsingpur area. This is the area where the road caves in, and you can see the deformed structure over here. And what we have been witnessing that earlier, due to rain, this road caves in, and after that, the reconstruction work is still going on. The district staff members are over here. I'm going to speak to them. अच्छा मुझे ये बताइए क्या नाम है आपका?
1: वीर सिंह सर.
0: वीर सिंह जी, एक बार की बारिश हुई गुरुग्राम के अंदर और रोड जो है बह गया, यहाँ पर गड्ढा बन गया, कैसे हुआ?
1: सर ये यहाँ पे पाइपलाइन का वर्क चल रहा था, यहाँ से पाइपलाइन आ रही थी उधर से, तो यहाँ पे गड्ढा किया था ताकि पाइपलाइन अंदर से ले लें, अंडरग्राउंड पाइपलाइन दबा लें, लेकिन वे अच्छे से कर नहीं पाए. उनकी लापरवाही की वजह से यहाँ पे गड्ढा हो गया. अगर वे अच्छे से करते, हमने उनसे कहा भी था कि है ना ध्यान से करना, इधर थोड़ा मेट हो, यहाँ की मिट्टी थोड़ी वैसी है, धस जाएगी.
0: आप कहना चाह रहे हैं कि एक समस्या को सॉल्व करने के बाद दूसरी समस्या खड़ी होगी?
1: बिल्कुल सर, ये इसी वजह से हुई है. यहाँ पे पानी भरता था इसलिए वे पाइपलाइन दबा रहे थे. उनका भी सही था.
0: ये जो आप लोगों ने अभी रोड जो टूट गया था, गड्ढा बन गया था, इसको अभी ठीक किया है, तो ये कब तक ट्रैफिक के लिए नॉर्मल ट्रैफिक आना जाना कब तक हो पाएगा, आह्वान कब तक हो पाएगा?
1: सुबह तक सर, ये रात शाम तक ओके हो जाएगा. ये जम जाएगा, यहाँ पे प्लास्टर लगाया हुआ है, ये शाम तक ओके हो जाएगा. ये रात में बारिश की वजह से ये जम नहीं पाया. अगर रात में बारिश नहीं होती तो सुबह तक ट्रैफिक भी नॉर्मल हो जाता.
0: राइट, एज यू कैन सी थ्रू द विजुअल्स व्यूअर्स, द डेब्रीज कैन बी सीन ओवर हियर. एंड राइट नाउ द गुरुग्राम पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट हैज इशूड एन एडवाइजरी, एंड दे हैव सेड दैट दोज हु आर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ नेशनल कैपिटल एंड दे आर हेडेड टुवर्ड्स जयपुर, दे आर एडवाइज टू टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम द राजीव चौक एंड गो टुवर्ड्स द साइड ऑफ द SPR रोड विच इज नोन एज द सदर्न पेरिफेरल रोड टुवर्ड्स जयपुर, एंड दे शुड अवॉइड दिस NH 48 रोड.
2: On that note, we slip to a short break. Once we're back, we'll get you the details and the highlights from Prime Minister's Indonesia visit. He's been on a temple visit with the Indonesian president. More on that in moments from now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
5: 1933। सरसों से सरसों
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
9: At any TV profits, every day is a new day, buzzing with news, information, analysis. A lot of it. That is why we separate the news that is urgent and important for you from what is not. News that influences outcomes across markets, policy, and the corridors of power. At 6 p.m., we turn our attention to the critical conversations that matter. I'm Vikram Oza, bringing you the big question, Monday to Thursday at 6 p.m.
10: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
11: Really?
10: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
12: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
13: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
14: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
15: दिस कार मेक्स नो सेंस येट इट मेक्स एवरी सेंस।
16: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
17: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मे बी नॉट।
18: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide in

0: All right, and news just coming in, and this has to do with the Sena cooperator. We're talking about Ramesh Mathre. News just coming in that his arrest seems to be imminent because the police now say we are in the process of arresting the cooperator, Ramesh Mathre. I have Abhishek joining me live. Abhishek, this is after NDTV brought to light this incident since last evening. We have been continuously covering this incident. We've also grilled the man in the center of this controversy, Mr. Mathre, who refuses to apologize. He says he's done nothing wrong. But what else have the police told you after this coverage here on our channel?
1: Definitely, you know, after this incident after NDTV highlighted the entire CCTV, which has gone viral now, where also he has been seen hitting to the female doctor. And while we confronted him, he tried to justify the act and he said that he didn't hit the doctor, he hit the phone instead. And at the same time, the police swung into action, has registered a case against him and his supporters. And since morning, after our relentless news break and our pressure on the administration, three of the accused were arrested. And now we understand that police have started the process to arrest the corporator. So definitely things are moving in the right direction, I would say, but at the same time, the way how a public representative, you know, taking law in its own hand and, you know, hitting out at doctor is something which is not acceptable, not tolerable. And the party to which this corporator belongs, Shiv Sena, has distanced itself and also said that this is not acceptable and a disciplinary action will also be taken. And more importantly, Dr. Srikanth Shinde, MP from the Shiv Sena and a senior leader, has posted on X and said that he, being a doctor himself, can understand what the doctors have gone through and this thing should not be repeated again. And at the same time, party will take a disciplinary action against the corporator. At the same time, police has also started and initiated the process to arrest the corporator.
0: Back. All right, Abhishek, do stay with me. We have more news coming in. This has to do with the controversy that we're talking about here on NDTV. You have Sanjay Raut that has come out from the UBT Sena. The MP has slammed the Maharashtra government. He has said, and I will be quoting him here, "I have suggested to the Chief Minister that he should either uphold the sanctity of the Home Minister's office or else, regarding those who laid hands on the female doctors and nurses, put them in handcuffs and parade them through the streets. After all, they do parade people to the police station, don't they?" Listen in to what Mr. Raut had to say.
2: Guru Mantri Badaji Puja Gala. Naitar Jani Cha Mahila Doctor Anavar Ani Nurses Wa Hat Takla Hai. Tancha Hata Madhe Bedaya Halun Tanchi Restaurant Ghenda Kada. पोलीस स्टेशनला इतरांच्या काढता ना तुम्ही बुलडोजर फिरवता ना यांचीही काढा आणि आता मग जाहीर करा करणार नसाल तर नाही आम्ही महाराष्ट्र गुंडांना आंदोलन दिलंय. मिंदे सेना काय आहे मी नेहमी म्हणतो ना, हे अंडरवर्ल्ड आहे. हे अंडरवर्ल्ड सगळे गुंड मिंदे सेना पोचते आणि अशा पद्धतीनं या महाराष्ट्रात त्यांना आपलं राज्य निर्माण करायचं आहे.
0: Abhishek Awasthi is live with us. Abhishek, you had the MP there from the Shiv Sena faction there speaking out, slamming the Maharashtra government. But we're also being told, like you said, that the police have said that they will be arresting the corporator Ramesh Mathre shortly. Pressure clearly mounting on the Maharashtra government to take action at this point.
1: See, definitely, you know, at one point of time, you have to understand it's a rule of law and no one is above law. Even a public representative, if doing such a kind of act and taking law in his own hand, action will be taken against him. And that's what happened, and the police had already registered the FIR yesterday, and now police have swung into action. Three arrests have already been made, and the next police is in the process to arrest the corporator also. On the other side, opposition is targeting and hitting out at the government, and specifically Home Minister, who is also the Chief Minister, Devendra Phadnavis, under whom the Home Department functions. Sanjay Raut has questioned it, and in fact he made a point there that, you know, these people who are of the Eknath Shinde Sena are belong to, more importantly, he alleged that those all are belonging to underworld and those are gundas, and that's what they want to do. This is how it is, and he should be roamed around in the street with a cuffed hand, is something that Chanjay Raut has said. So definitely at one point of time, police has swung into action. Opposition is targeting the Home Minister, that is the Chief Minister, and also demanding answer from him. But we will have to wait and watch out for how does things pans out, how soon the arrest is made. And at the same time, as we speak, the OPD services at the hospital remain suspended. The doctors are strict on their demand that they should be provided security, and at the same time, the corporator needs to be arrested. Until then, the services will not be resumed. Back to you.
0: All right, thanks for joining me live there. NDTV, of course, will track all the developments after we have brought this incident to light. Action has been promised. Let's just see how long it will take to arrest the corporator, Ramesh Mhatre. Now, after NDTV grilled the Sena corporator who assaulted a woman doctor, two fellow physicians and three nurses in Dombivli's government hospital, the Mumbai police is in action and have assured that they will arrest the corporator, Mhatre. The Maharashtra police have also arrested three people in this case. While talking to NDTV, Mhatre has denied assaulting any female doctor or nurse. He claims he intervened to save the life of a pregnant woman. He says he respects women and maintains that while he snatched a phone from a doctor's hand during the altercation, he did not physically assault any member of the medical staff. But of course, the visuals tell you a different story. This comes after a video of him went viral of assaulting doctors and nurses in the hospital. NDTV's managing editor Shivarur has spoken with the corporator in question. Here's an excerpt.
3: जो वीडियो जो सामने आया है जो एनडीटीवी ने ब्रेक किया है सीधा सवाल है रमेश जी ये है कि क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए क्या आपको शर्म नहीं आती
4: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया
3: वीडियो तो सामने है सर वीडियो तो सामने है हमारे
4: नहीं उसका फोन कान से हटाया हमने
3: सर वीडियो
4: फोन कान से हटे फोन पे बात कर रहे थे हमसे बात ही नहीं कर रही थी वो
3: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठाने
4: का फोन के ऊपर मारे फोन रखो
3: आपको आपको किसने
4: नहीं नहीं नहीं नहीं
3: भी कभी नहीं किसी पे भी हाथ
4: हमारा हम शिवसैनिक है लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते
3: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर
4: वो जो बता रहे हैं वो जो बता रहे
3: हैं पे आपने हाथ उठाया है
4: लेकिन वो जो
3: गुंडे आपके पास थे
4: फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया
3: और उसका अलग किया नहीं किया आपने उसके हाथ और गले
4: हमसे बात नहीं कर रही थी
3: वो वीडियो पे आ रहा है ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी आप झूठ नहीं बोल सकते हैं आप झूठ नहीं बोल
4: गले पे नहीं मारा है कान में फोन रखा था फोन के ऊपर हमने झटका दे के फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से
3: रमेश जी
4: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन
3: मेरा सवाल सुनिए चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा आप फोन हटा रहे थे आप एक कॉर्पोरेटर हो आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का आपको किसने हक दिया
4: हमको हक हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया जहां भी अन्याय हो वहां आप अपना तरीका दिखा सकते हो
3: हाथ उठाने का हक बालासाहेब ठाकरे ने दिया आपको
4: वहां एक
3: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
4: अन्याय के खिलाफ कुछ भी हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया आप
3: सर ये वीडियो तो देखिए
4: क्या वो डॉक्टर ने एक पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या देखने दो ना पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था
3: सर आप जो
4: हमको
3: काम करते हैं
4: बात करने
3: आपका काम है सर
4: हम आते ही नहीं अगर हमारा फोन उठा दे तो हम आते ही नहीं सर उधर
3: तो आपके पास कोई अफसोस नहीं
4: अगर हमारा फोन लेते हैं डॉक्टर तो हम
3: आखिरी सवाल
4: जरूरत ही नहीं पड़ता था
3: अफसोस बिल्कुल नहीं है हिंसा इस्तेमाल करने का कोई अफसोस ही नहीं है रिग्रेट नहीं है क्या आप माफी मांगेंगे डॉक्टर श्रुति डॉक्टर वैभव जो दो नर्सेस थे वहां पे क्या आप माफी मांगेंगे उनसे एफआईआर दर्ज हुई है आपके खिलाफ, आपके गुंडों के खिलाफ भी दर्ज हुई है।
4: भी दलित थी और मेरे को सर सुनिए
3: सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंडर द लॉ देन वायलेंस हैज बीन यूज्ड।
4: नहीं फर्क पड़ता है, मेरे बात तो सुनो, वो लेडी डॉक्टर थी ना सर, लेडी डॉक्टर थी ना, वो भी दलित समाज है और मेरे को अभिमान है कि दलित समाज की लेडी डॉक्टर बनती है, एक लड़की डॉक्टर बनी है, हमारे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उसके लिए मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसके लिए।
3: लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप ये दलित कार्ड प्ले कर रहे हो।
4: अभी मारूंगा,
3: आप कुछ कागज से पढ़ रहे हैं क्या सर?
4: मैंने किया है,
3: आप कुछ एक दो कुछ जान बचे पढ़ रहे हैं?
4: मैं हमारे वजह से दो जान बच गई है सर, हमारे दो जान बच गए, हम एसएससी पास है
3: सर। ये तो साफ नजर आ रहा है कि आपके पास एक नैरेटिव मिल गया है,
4: हमारे पास एक नैरेटिव मिल गया है
3: निकलने का। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपको,
4: और उसके माँ की जान बच गई है।
3: डॉक्टर श्रुति और डॉक्टर वैभव और दो नर्सेस जो हैं, जो जिसको आपने मारा है और आपके गुंडों ने मारा है, क्या आप माफी मांगेंगे? एनडीटीवी, आप नेशनल चैनल पर हो ना लाइव हो, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे?
4: कार्यकर्ता थे सर, वो कार्यकर्ता थे हमारे पार्टी के, कार्यकर्ता थे
3: वो जो गुंडे हैं। ये विजुअल देखिए एनडीटीवी पर, ये रो रहे नर्सेस, ये नर्सेस और डॉक्टर्स रो रहे, उनकी आंखों में आंसू है सर, वो स्ट्राइक पर है अभी क्योंकि आपने हाथ उठाया उन पर।
4: तो सर वो उसके आंखों में आंसू
3: जो टीवी और
4: जो प्रेग्नेंट महिला थी वो क्या जानवर थी क्या?
3: क्या आगे जाके आदमी नहीं करेंगे आप? आगे जाके
4: नहीं था
3: ये सब
4: हमारे सीएम,
3: ये सब छोड़िए, आप जननायक नहीं हो सर, हाथ उठा के आप जननायक नहीं बनते हो, आप गुंडे ही हो, अगर आप हाथ उठाएंगे तो आप गुंडे ही हो, आप गुंडा आ जाएगा।
0: Shiv Arora now joins me live. Shiv, it's a travesty in a way that it takes media coverage to expose what we've seen yesterday between the corporator and the people of that hospital who were just doing their job. Three arrests, but the big question is, when will Mr. Mahathre be arrested? We're being told by the police it is imminent, but why is it taking so long after everything is out there in clear proof through the videos that have circulated and that we have put on air, and we've consistently been covering this story?
5: You know, this story would have been completely lost had it not been for NDTV's incredible reporting team highlighting this story. That's the reason why it broke first. It would have simply gone into, you know, 100 other cases of political violence in Maharashtra that never gets any attention. So I first want to say that none of this action would have taken place had it not been for NDTV's relentless coverage of this. Point number two, I will believe the arrest when I see it. You know, too many times in the past, Vedika, we've seen action being taken incrementally as a result of media pressure. You saw the entire media wake up 18 hours after NDTV broke the story because of the amount of traction the story was getting, the huge amount of anger in the healthcare and medical community, all across social media in the wake of NDTV's coverage. But you also heard the comments from Ramesh Mahathre himself. You know, he wants to say, you know, give a sort of conditional apology. He says, I didn't hit the woman, doctor, you know, when all of it has been captured on video. This is a fine example of how relentless and focused media heat can actually create impact. But I am waiting to see what action Eknath Shinde, the Deputy Chief Minister, himself takes. There's not been a word from him so far. There is huge anger in the medical community. We've heard multiple, you know, doctor bodies talk about, you know, statewide or even nationwide stirs as a result of this kind of violence. This kind of thing happens quite often, as we've covered here on NDTV in Maharashtra, and therefore the placeholder actions, placeholder statements from the political parties, the police, etc., are not going to pass muster with us here on NDTV. We will be following this. This has become an example in many ways in people's minds about how this brand of Sena violence, which used to be typical of the old times, is still existing. Remorseless violence perpetrated by people who consider themselves to be, Bahubalis on the ground for the people. There is no place for it anymore. Ramesh Mahathre represents the old Gundagardi of the Sena, which still exists, obviously, and there's no place for it. And that's why justice needs to
0: be. And Shiv, while we wait for the corporator to be arrested, this is the action that must be taken to assure the medical community that, yes, they will remain safe, action will be taken when they are harmed.
5: Very true. Look at the doctors. Look at the images of the doctors in that KDMC hospital in Dombivli, Vedika. They've got tears in their eyes. They're terrified. When I spoke to the CMO of that hospital last night, Dr. Deepa Shukla, she was live with me from the police station. The police were not even willing to register the FIR. The FIR was registered 24 hours later. After my 9 p.m. show, the FIR was finally registered, which means that nothing happens by itself. The wheels of justice do not turn by themselves. And if you look at that interview with Dr. Deepa Shukla, she's terrified. She's practically shaking, hesitant to say anything. The doctors on camera have tears in their eyes. They are extremely scared. There are multiple cases. Back in 2001, there was a Sena figure called Anant Dighe who died in an accident, was brought to a hospital in Mumbai. That entire hospital was practically burned to the ground. The Singhania Hospital, a famous incident. Multiple incidents of that kind have happened. So doctors and healthcare professionals are very well aware of this brand of Sena violence. So their fear, the psychosis of those times is very much present and apparent in their eyes. And I'm not surprised at how upset, how angry and how scared they are. And that's the reason why the media needs to stay on this story.
0: Right, Shiv, thanks for joining us live, and thank you for grilling that corporator the way you did, despite him not apologizing. What it did was bring attention to a man who was remaining defiant. Now, the Maharashtra government has taken note of NDTV's coverage on the assault on a female doctor by Shiv Sena corporator Ramesh Mhatre. Shiv Sena MP Shrikant Shinde has condemned the assault, saying such behaviour is unacceptable, confirming that a police case has been registered and assuring that strict action will be taken. Meanwhile, Shiv Sena MLA Sanjay Gaikwad has defended the corporator and said doctors are just after their salaries, insult after injury there by the MLA. Shiv Sena UBT MLA Aditya Thakur has targeted the Mahayuti government, questioning whether Chief Minister Devendra Fadnavis will tolerate quote-unquote gundagardi of an ally, and demanding action against the corporator.
6: लोकशाही प्रक्रिया में जिस तरह से अगर हम लोग काम करते हैं तो काम करते समय अगर किसी से दिरंगाई होती है तो उसके लिए अपीलिंग अथॉरिटी है, कंप्लेनेंट अथॉरिटी है, उनके पास हम लोग जाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे तो सही रहेगा। हम अगर मारपीट पे आएंगे तो ये बात ठीक नहीं है। जैसा कि लोकशाही प्रक्रिया में हम लोग जबकि पॉलिटिकल वर्कर है तो हम लोगों के लिए बहुत सारी आचार संहिता रहती है जिसका पालन करना ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। डॉक्टर्स को हम लोग अपील करेंगे, एक घटना घटी है तो उसके लिए जो कुछ कार्रवाई करनी चाहिए वो तो कार्रवाई होगी। बाकी अभी तो बारिश चल रही है, बारिश इतनी चल रही है कि डॉक्टर्स की ज़रूरत अभी हमें है, समाज को है, तो इसके लिए ज़रा थोड़ी सी धीरज रखिए। जो गलत है उसके लिए जो कुछ कार्रवाई होगी हो जाए।
7: हमने इसमें टीवी पे देखा है, अभी साहब हमारे उसके ऊपर निर्णय ले लेंगे क्या बात हुआ, किस तरह से ऐसा किया और क्यों किया, नहीं करना चाहिए, ये बात सही है, और हमारे साहब उसका एक्शन ले लेंगे। वहाँ सो हुआ लेकिन उसका भी एकनाथ शिंदे साहब कोई ना कोई तरह तजुर्बा निकाले।
8: रमेश मात्रे का मैंने वीडियो कोई महिला डॉक्टर को मारते हुए नहीं देखा है। जहाँ मारपीट हो रही है वो दो जेंट्स में हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी सिविल हॉस्पिटल है, मैं 40 साल से मेरा उन लोगों से संपर्क है। जिस तरह से हम सरकारी कर्मचारी, हमारा पगार चालू है, हम पेशेंट आए जाए, पेशेंट मरे या उसके ट्रीटमेंट ना हो, ये सारी कर्मचारियों की मानसिकता मैंने आंखों से देखी है। इसी वजह से एकादे पेशेंट की अवहेलना देखने के बाद में, उसकी गंभीर स्थिति देखने के बाद में किसी को गुस्सा आ सकता है, बट मैं उनका समर्थन करूँगा नहीं। शायद वो चाहते तो वो अलग मार्ग से करते थे, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल की परिस्थिति बदलना भी जरूरी है।
9: गुंडागर्दी को पार्टी नहीं होती, रंग नहीं होता, जात नहीं होती, ना कोई विषय में गुंडा कोई भी पार्टी का होने दो, किसी बड़े नेता का भाई होने दो। आप मुझे आज भी याद है, सन्माननीय सुधाकर राव नाईक जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों में ऐसा जेल में ठूस दिया, भाई ठाकुर याद आते होंगे ना आपको। तो मैं समझता हूं कि गुंडे को कौन सी पार्टी है, उसको पार्टी में सदस्य बनना, इसमें कोई स्क्रूटिनी नहीं होती। तो कभी कभी कोई व्यक्ति गुंडागर्दी करता होगा तो कानून अपना काम करेगा, उसको पार्टी कहाँ पे है।
10: कई दिनों से बोल रहा हूँ कि जो पांचवी बहुमत बेईमानी से इनको मिला है उसकी मस्ती इन लोगों को आई है, और वो मस्ती के आधार पर इनको लगता है कि हम परमानेंट ये व्यवस्था में हैं, हम शासक हैं, और यही घमंड इनके ऊपर है। और इसलिए एक महिला डॉक्टर को और नर्सेज को मारने की तक इन लोगों ने कदम उठाया है, इसका हम निषेध करते हैं, और ये सावित्रीबाई फुले का महाराष्ट्र है, महिलाओं का सम्मान ये महाराष्ट्र का स्वाभिमान रहा, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी वही का किया है। पर ये तो मुगलों के जैसे ही आज इनका व्यवहार शुरू हो चुका है, और इसलिए इसका हम निषेध करते हैं और विधानसभा में ये सब्जेक्ट हम उठाएंगे और सरकार को कहेंगे त्वरित कार्रवाई की जाए।
11: सिंधे सेना के चाहे विधायक हों, नगर सेवक हों, इनको सत्ता का माज आ गया है। सत्ता के घमंड में चूर होकर चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो या अधिकारी हो, उनके साथ इसी तरह का ये बर्ताव कर रहे हैं। इनका आचरण बहुत ही घटिया होते जा रहा है। लोगों को न्याय देने के लिए काम करने के बजाय ये अधिकारी और डॉक्टर और डॉक्टरों जैसे लोगों के ऊपर इस तरह से पावर के नशे में, सत्ता के नशे में चूर होकर इस तरह से हमला कर रहे हैं या धक्का मुक्की करते हैं या गाली गलौज करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है।
0: The mother of the patient whom the corporator claimed to have protected has defended the corporator.
12: 6 बजे से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे, पाव पड़ रहे डॉक्टर के पास। अब वो भी लेडीज है ना, वो लेडीज के ऊपर लेडीज जान नहीं बचा सकती, तो फिर क्या वो डॉक्टर हम लोग भगवान मानते हैं, मैं बोलती भी हूँ उनको।
13: लेकिन जिस तरीके से दादा के कार्यकर्ता आते हैं, दादा खुद आते हैं, एक तरीके से हाथापाई होती है, वो कितना सही लगता है आपको?
12: सही नहीं है, गलत नहीं, सही भी नहीं है। वो लोग ने बहुत दादा के ऊपर गलत किया है, इसीलिए दादा ने बच्चा समझ के तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे, बच्ची के जान जाएंगे, इसीलिए दादा ने उसको ऐसा मारा है। नहीं तो कुछ भी नहीं, इतना वो लोग ने बहुत लंबा खींच के लगाया है।
0: The Federation of All India Medical Association has expressed its strongest condemnation of the brutal assault on doctors, nurses and healthcare workers.
14: We are receiving complaints from Maharashtra and various other states of the country that there is no security. The security guards who works in a hospital are merely retired officials of paramilitary forces who are just making sure that the cars are parked in a right way. Whenever something like this happens, there is no security. And when some politicians like this, some corporator who is on the one of the topmost post and does something like this, then FIR is not done, police does not take action. And the entire matter, if the media would have not raised this issue, this matter would have gone in silent and nothing must have been done. And even right now, I was just hearing the arrogance and the goonism that is still there in this person. And the way he was speaking, that whatever he has done is correct, and he still believes that he is right in some way or the other.
0: In news just coming in, Trinamool Congress MP Kirti Azad has launched a sharp attack on the BJP over the police encounter of an accused in the Baroipur case. Azad has questioned how an encounter could take place when the accused was in police custody, claiming the incident raises serious questions. Listen in.
15: आपको मालूम है प्रभास मंडल कौन है? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसके पास बहुत सारे इनके बारे में मालूम है, और यूपी की तरह कार्यक्रम यहाँ भी चालू हो गया। जिन लोगों को इनकी अंदर की बातें हैं, बीजेपी की अंदर की बातें मालूम है, इन्होंने क्या क्या तैयारी की हुई है, उस सब के बारे में ये लोग उगल न दें, इसलिए इनको दिखाया जा रहा है कि एनकाउंटर हो गया। तुम्हारे कस्टडी में है, कैसे एनकाउंटर हो गया? तुमने तो उसको पकड़ के रखा होगा ना, तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है।
0: Well, the Trinamool leader there alleging that the accused had links with the BJP and suggested the encounter was carried out to prevent sensitive information from coming out. His remarks have further intensified the political war of words over the controversial police action. Ritik Mondal now joins me live. Ritik, the TMC there coming down hard on the West Bengal government, claiming that this was a staged encounter. That's what they're questioning. What is the police saying in their defense till now over this encounter?
16: Well, Vedika, we have already visited the crime scene or even the spot where this encounter did take place. It is at a stone throw distance where the crime took place a couple of days back. What the police are telling us, they said that late last night around 12 a.m.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसो से सरसो। थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
9: At NETV Profits, every day is a new day, buzzing with news, information, analysis. A lot of it. That is why we separate the news that is urgent and important for you from what is not. News that influences outcomes across markets, policy, and the corridors of power. At 6 p.m., we turn our attention to the critical conversations that matter. I'm Vikram Oza, bringing you The Big Question, Monday to Thursday at 6 p.m.
10: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
11: Really?
10: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
12: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
13: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
14: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
15: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
16: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
17: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मेबी नॉट।
18: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
19: Buy. Sell. Hold.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसो से सरसो। थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
6: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
7: At NDTV Profits, every day is a new day, buzzing with news, information, analysis. A lot of it. That is why we separate the news that is urgent and important for you from what is not. News that influences outcomes across markets, policy, and the corridors of power. At 6 p.m., we turn our attention to the critical conversations that matter. I'm Vikram Oza, bringing you The Big Question, Monday to Thursday at 6 p.m.
8: This is a show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
9: Really?
8: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program.
10: Let's get it.
8: Hello and welcome to a brand new show. I am your host, Mayank Chaudhary, and this is Limelight.
11: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
12: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
13: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
14: दिस कार मेक्स नो सेंस येट इट मेक्स एवरी सेंस।
15: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
16: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मेबी नॉट।
17: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
18: Buy. Sell. Hold. Hold.
11: Confused? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet. Monday to Friday, 10:30 a.m. Only on NDTV Profit.
19: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
20: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
1: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
21: सरसो
22: से सरसो। दे से मॉर्निंग शोज द डे। मार्केट्स ऑफन हैव अदर प्लान्स। बाय मिडडे द स्टोरी कैन बी वेरी डिफरेंट। दैट्स व्हेन द राइट इनसाइट्स हेल्प्स यू रीथिंक द डे। ट्रेड्स, ट्रेंड्स, द मूव्स दैट मैटर। Join me, Nisha Poddar, for Markets at 12, your edge for every move.
11: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
23: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV. Jury, I have been a fan of NDTV for a long time.
24: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
25: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
26: It's also important that how they are reshaping the industries.
27: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
11: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards. India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
23: These are kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
24: The eminent juries who are here and the
0: That itself speaks for the commitment towards highlighting the advantage which India is having. What I am looking for in this is that we should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth, but also on bringing good governance.
4: Be part of the jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
11: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
22: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
5: When markets close, clarity matters as much as speed.
22: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
5: Because the last hour today gives you the head start you need tomorrow.
22: Join us before every closing bell
5: on India Market Close.
6: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV Newsroom, weekdays at 4 p.m.
7: Literally go from the man on the outside looking in, now to the man on the inside looking out.
9: I think that was one of my biggest drivers to become an astronaut.
7: Iron Man, Kokoro, how does that prepare the body for something with no finish line?
9: I would say it prepares the mind more than it prepares the body. I live right next to NDTV in Greater Kailash in New Delhi.
7: What would the young man in India say if he could see you right now?
9: I'll be up there soon with you.
22: First move sets the day, and in markets, being early is the edge. The edge begins the night before.
10: Before India wakes up, the newsroom is already buzzing because the market rewards those who are prepared.
21: That's where we come in, tracking momentum and where the markets could move next.
22: I decode the global pulse, shaping the market mood.
10: I bring insights that help you make decisions that matter.
21: Insight by insight, call by call. That's how we give you a head start to the day's trade.
22: So get ready with us every morning before the opening bell on India Market Open.
28: Buy now. Sell immediately.
29: Hold it, boss.
28: Buy now. Buy now.
29: Sell. Hold. Hold.
22: Welcome back. An NDTV Impact. Three people have been arrested for their role in the assault on doctors at the Kalyan Dombivli Hospital, allegedly led by Shiv Sena co-operator Ramesh Mhatre. After NDTV grilled the Sena co-operator who assaulted the woman doctor, two fellow physicians and three nurses in the government hospital, the Mumbai police now in action and assured that they will arrest the co-operator Ramesh Mhatre as well. Maharashtra police has also arrested, as we mentioned, three people. While talking to NDTV, Ramesh Mhatre denied assaulting any woman doctor or nurse, even though you can see, you know, the visuals there all caught on CCTV. He claimed that he intervened to save the life of a pregnant woman. That is what the whole argument was over. He says he respects women and maintains that while he snatched a phone from a doctor's hand during the altercation, he did not physically assault any member of the medical staff. Now, this comes, as we said, after a video of him went viral of him assaulting doctor and nurses in the hospital.
30: आम्ही गुन्ह्यात गुन्ह्याच्या अनुषंगाने जे काय आम्हाला स्टेप घ्यायचे आहे ते आम्ही स्टेप आता घेतोय आणि त्याप्रमाणे पुढची कारवाईपर्यंत तीन आरोपी अटक केलेले आहेत.
31: मुख्य आमचा प्रश्न आहे, नगरसेवक रमेश मात्रेंना अटक का नाही?
30: आरोपी शोधतोय.
22: NDTV's managing editor Shiv Arur grilled the Shiv Sena co-operator who, as you'll just see, remained defiant about his actions. Listen to what he said.
32: ये जो वीडियो जो सामने आया है, जो एनडीटीवी ने ब्रेक किया है, सीधा सवाल है रमेश जी, ये है कि क्या आप क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए? क्या आपको शर्म नहीं आती?
1: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है, लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया।
32: वीडियो तो सामने है सर, वीडियो तो सामने है हमारे।
1: नहीं, उसका फोन कान से हटाया हमने
32: सर। वीडियो
1: फोन कान से हटे, फोन पे बात कर रहे थे, हमसे बात ही नहीं कर रही थी वो।
32: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठाने
1: का? फोन के ऊपर मारे, फोन रखो।
32: आपको आपको किसने
1: नहीं नहीं नहीं नहीं
32: नहीं कभी नहीं, किसी पे भी हाथ
1: हमारा, हम शिवसैनिक है, लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते।
32: आपने हाथ आया है एक लेडी डॉक्टर, डॉक्टर
1: वो जो बता रहे हैं, वो जो बता रहे
32: वैभव पे आपने हाथ आया है,
1: लेकिन वो जो
32: गुंडे आपके
1: फोन के ऊपर, फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया,
32: फोन उसका अलग किया, नहीं किया आपने उसके हाथ और गले
1: हमसे बात नहीं कर रही थी
32: ये
1: वो।
32: वीडियो पे आ रहा है, ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते।
1: गले पे नहीं मारा है, कान में फोन रखा था, फोन के ऊपर हमने झटका दिया के फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से।
32: रमेश जी
1: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन।
32: मेरा सवाल सुनिए। चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा, आप फोन हटा रहे थे, आप एक कॉर्पोरेटर हो, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का? आपको किसने हक दिया?
1: हमको हक हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहां भी अन्याय हो वहां आप अपना तरीका दिखा सकते हो,
32: हाथ उठाने का हक बालासाहेब
1: हमारे भी
32: आपको
1: वहां एक।
32: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
1: अन्याय के खिलाफ कुछ भी नागरिक, हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया। आप
32: सर ये वीडियो तो देखिए,
1: क्या वो डॉक्टर एक पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या? देखने दो ना, पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था
32: सर? आप जो
1: हमको
32: काम करते हैं,
1: बात करने
32: आपका काम है सर,
1: हम आते ही नहीं। अगर हमारा फोन उठा दे तो हम आते ही नहीं सर उधर।
32: तो आपके पास कोई अफसोस नहीं?
1: अगर हमारा फोन लेते हैं डॉक्टर तो
32: हमको
1: जरूरत ही नहीं पड़ता था।
32: अफसोस बिल्कुल नहीं है, हिंसा इस्तेमाल करने का कोई अफसोस ही नहीं है, रिग्रेट नहीं है। क्या आप माफी मांगेंगे डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर वैभव जो दो नर्सेस थे वहां पे, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे? FIR दर्ज हुई है आपके खिलाफ, आपके गुंडों के खिलाफ भी दर्ज हुई है।
1: दलित थी और मेरे को सर सुनिए
32: सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
1: दलित
32: से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंडर द लॉ वायलेंस हैज बीन यूज्ड,
1: नहीं फर्क पड़ता है। मेरी बात तो सुनो, वो लेडी डॉक्टर थी ना सर, लेडी डॉक्टर थी ना, वो भी दलित समाज है और मेरे को अभिमान है कि दलित समाज की लेडी डॉक्टर बनती है, एक लड़की डॉक्टर बनी है, हमारे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उसके लिए मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसके लिए।
32: लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप ये दलित कार्ड प्ले कर रहे हो।
1: अभी मारूंगा,
32: आप कुछ कागज से पढ़ रहे हैं क्या सर?
1: मैंने किया है,
32: एक दो जान बच रहे हैं,
1: मैं हमारे वजह से दो जान बच गई है सर, हमारे दो जान बच गए हैं, हम SSC पास है
32: सर। ये तो साफ नजर आ रहा है कि आपके पास एक नैरेटिव मिल गया है,
1: हमारे
32: पास एक नैरेटिव मिल गया है निकलने का। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपको,
1: और उसके माँ की जान बच गई है।
32: डॉक्टर श्रुति और डॉक्टर वैभव और दो नर्सेस जो हैं, जो जिसको आपने मारा है और आपके गुंडों ने मारा है, क्या आप माफी मांगेंगे? NDTV आप नेशनल चैनल पर हो ना लाइव हो, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे?
1: कार्यकर्ता थे सर, वो कार्यकर्ता थे हमारे पार्टी के, कार्यकर्ता थे
32: वो जो गुंडे हैं। ये विजुअल देखिए NDTV पर, ये रो रहे नर्सेस, ये नर्सेस और डॉक्टर्स रो रहे, उनकी आंखों में आंसू है सर, वो स्ट्राइक पर है अभी क्योंकि आपने हाथ उठाया उन पर।
1: तो सर उसके आंखों में आंसू है,
32: जो टीवी और पर वो
1: जो प्रेग्नेंट महिला थी वो क्या जानवर थी क्या?
32: क्या आगे जाके
1: आदमी नहीं
32: करेंगे आप? आगे जाके
1: काम उसका नहीं था,
32: ये सब छोड़िए,
1: हमारे CMO ने
32: ये सब छोड़िए, आप जननायक नहीं हो सर, हाथ उठा के आप जननायक नहीं बनते हो, आप गुंडे ही हो। अगर आप हाथ उठाएंगे तो आप गुंडे ही हो, आपको गुंडा आ जाएगा।
6: All right, and the police have said that Ramesh Mahatre will also be arrested soon and he will be held. Three people have already been arrested in this case. With that, we'll slip into a short break. More news and updates on the other side. Stay with us.

0: Fred, up first, breaking news and also a big question. Why hasn't the Sena corporator Ramesh Mahatre been arrested yet? Remember, he was the corporator who was involved in the assault on two doctors at a government hospital in Dombivli. And we had him on our channel this morning. He was speaking to managing editor Shiv Arur. Why are the cops still looking for him and why hasn't he been arrested? Three have already been arrested in this case of assault. There you can see him on your screen. Assaulting this doctor over here. He claimed on NDTV that he was only hitting her phone. However, as you can clearly see, that the doctor is being assaulted. Now, this took place yesterday evening at the Dombivli government hospital there, where it was over an issue of finding a bed for an infant, and they were the corporator along with his aides there asking for that infant to be shifted to another hospital to be provided a bed. However, as you can see, things got out of hand and two doctors were assaulted by the corporator and his aides, rather goons, as you can see the manner in which they are behaving with the doctors. And there you can see him reaching out and hitting the doctor as well. He has claimed he was simply striking the phone out of her hand, but this has become a huge controversy. And as we said, three people have been arrested, but the corporator, however, has still not been arrested. Well, let's go across to Radhika now for more on this entire case. And Radhika, what are the police saying? Three people arrested, but no action yet against Ramesh Mahatre.
1: That's right, Ramesh Mahatre is the key accused in the case. Despite that, he has not been arrested. It's quite shocking, certainly. This is an incident that happened about 2 days back. In fact, a day and a half ago, day before yesterday night was when this incident happened, after which post outrage and anger is when the police decided to register an FIR against five individuals, and three people have been arrested in connection to the case, and those three are aides of Mahatre. Mahatre is at large. I did speak to the police officials concerned, and they say that he will be arrested. The process has begun and we are on the hunt for him. But we spoke to opposition leaders. I spoke to the family members as well just a while ago. All of them echo the sentiment that Mahatre is being protected by the ruling party and that he may perhaps not be arrested. And if he's arrested, he will be granted bail immediately, or there is a possibility that he may go for an anticipatory bail also. So those are the fears as far as the family members are concerned. They did tell us about the ordeal faced by the victims here, both the male as well as the female doctors, and what exactly transpired 2 days back. There is a lot of outrage. This is the hospital where this incident happened. In fact, a lot of procedures here lot of the non-emergency procedures here really have been halted. Only emergency procedures are going on. Silent protest happening. There were multiple meetings that happened inside since morning between the members of the medical fraternity as well as with the politicians. But really, we'll have to see what happens in the next few hours, because the big question really in the minds of everybody here is, when will Ramesh Mahatre be arrested?
0: All right, Radhika, thanks so much for joining us. Radhika, they're reporting from outside that hospital. As she said, the hospital right now, the doctors are protesting. They're very angry over this entire issue, and only essential operations are taking place at the hospital. So let's take you through this development. This incident, as we said, took place a day before yesterday, and now three people, after the outrage, after that video went viral, NDTV also raising it, finally then, three people arrested for their role in the assault on the doctors, allegedly by the Shiv Sena corporator Ramesh Mahatre. And this after NDTV grilled the Sena corporator who assaulted the woman doctor and two other physicians as well as nurses there in the government hospital in Dombivli. The Mumbai police finally in action today and assured that they will also arrest the corporator as well, Ramesh Mahatre. However, three people arrested. No action yet against the corporator. So where really is he is the question. While talking to NDTV this morning, Ramesh Mahatre denied assaulting any woman doctor. He claims he intervened to save the life of a pregnant woman, and he says that he respects women and maintains that while he snatched a phone from the doctor's hand during this altercation. He did not physically assault any member of the medical staff. But as you can see on your screens there, there is that video that has gone viral and caused so much outrage of him and his aides assaulting doctors and nurses in the hospital.
2: आम्ही गुन्ह्यात गुन्ह्याच्या अनुषंगाने जे काय आम्हाला स्टेप घ्यायचे आहे ते आम्ही स्टेप आता घेतोय आणि त्याप्रमाणे पुढचे कारपर्यंत तीन आरोपी अटक केलेले आहेत.
3: मुख्य आमचा प्रश्न आहे नगरसेवक रमेश मात्रेंना अटक का नाही.
2: आरोपी शोधतोय.
0: All right, as we mentioned, we did have Ramesh Mhatre on our channel this morning speaking to Shiv Arora, and listen in to what he had to say, how he defended himself and actually claimed that he did not assault the lady doctor.
4: ये जो वीडियो जो सामने आया है जो एनडीटीवी ने ब्रेक किया है, सीधा सवाल है रमेश जी, ये क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए? क्या आपको शर्म नहीं आती?
5: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है, लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया.
4: वीडियो तो सामने है सर, वीडियो तो सामने है हमारे.
5: नहीं, उसका फोन कान से हटाया हमने
4: सर. वीडियो
5: फोन कान से हटाया, फोन पे बात कर रहे थे, हमसे बात ही नहीं कर रही थी वो.
4: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठाने
5: का? फोन के ऊपर मारे, फोन रखो.
4: आपको किसने
5: हम शिवसैनिक है, लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते.
4: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर
5: वो जो बता रहे हैं, वो जो बता रहे
4: पे आपने हाथ उठाया होगा,
5: लेकिन वो जो
4: गुंडे
5: फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया.
4: और उसका अलग नहीं किया आपने, उसके हाथ और गले
5: हमसे बात नहीं कर रही थी.
4: ये वीडियो पे आ रहा है, ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं. आप झूठ
5: नहीं
4: बोल सकते.
5: गले पे नहीं मारा है, कान में फोन रखा था. फोन के ऊपर हमने झटका दिया के फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से.
4: रमेश जी,
5: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन.
4: मेरा सवाल सुनिए. चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा, आप फोन हटा रहे थे. आप एक कॉर्पोरेटर हो, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो. आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का? आपको किसने हक दिया?
5: हमको हक हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया. जहां भी अन्याय हो वह आप अपना तरीका दिखा सकते हो.
4: हाथ उठाने का हक बालासाहेब हमारे
5: भी
4: आपको
5: वहां एक.
4: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
5: अन्याय के खिलाफ कुछ भी हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया. आप
4: ये वीडियो तो देखिए.
5: क्या वो डॉक्टर पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या? देखने दो ना, पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था
4: सर. आप जो
5: हमको
4: काम करते हैं,
5: बात करने
4: आपका काम है सर.
5: हम आते ही नहीं. अगर हमारा फोन उठा दे तो हम आते ही नहीं सर उधर.
4: तो आपके पास
5: फोन
4: उठा था,
5: अगर हमारा फोन लेते हैं डॉक्टर तो हम
4: आखिरी सवाल
5: जरूरत ही नहीं पड़ता था.
4: अफसोस बिल्कुल नहीं है, हिंसा इस्तेमाल करने का कोई अफसोस ही नहीं है, रिग्रेट नहीं है. क्या आप माफी मांगेंगे डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर वैभव, जो दो नर्सेस थे वहां पे, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे? FIR दर्ज हुई है आपके खिलाफ, आपके गुंडों के खिलाफ भी दर्ज हुई है.
5: भी दलित थी और मेरे को सर सुनिए
4: सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अंडर द लॉ वायलेंस हैज बीन यूज्ड.
5: नहीं फर्क पड़ता है, मेरी बात तो सुनो. वो लेडी डॉक्टर थी ना सर, लेडी डॉक्टर थी ना, वो भी दलित समाज है और मेरे को अभिमान है कि दलित समाज की लेडी डॉक्टर बनती है. एक लड़की डॉक्टर बनी है, हमारे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उसके लिए मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसके लिए.
4: लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप ये दलित कार्ड प्ले कर रहे हो.
5: अभी मारूंगा.
4: आप कुछ कागज से पढ़ रहे हैं क्या सर?
5: मैंने किया है.
4: आप कुछ
5: एक दो
4: कुछ
5: जान बचे
4: पढ़ रहे
5: हैं? हमारे वजह से दो जान बच गई है सर. हमारे दो जान बच गए. हम एसएससी पास है
4: सर. ये तो साफ नजर आ रहा है कि आपके पास एक नैरेटिव मिल गया है.
5: हमारे
4: पास एक नैरेटिव मिल गया है निकलने का. मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ
5: आपको, आप और उसके माँ की जान बच गई है।
4: डॉक्टर डॉक्टर श्रुति और डॉक्टर वैभव और दो नर्सेस जो हैं, जो जिसको आपने मारा है और आपके गुंडों ने मारा है, क्या आप माफी मांगेंगे? एनडीटीवी, आप नेशनल चैनल पर हो ना लाइव हो, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे?
5: कार्यकर्ता थे सर, वो कार्यकर्ता थे हमारे पार्टी के, कार्यकर्ते थे
4: वो जो गुंडे हैं। ये विजुअल देखिए एनडीटीवी पर, ये रो रहे नर्सेस, ये नर्सेस और डॉक्टर्स रो रहे, उनकी आंखों में आंसू है सर। वो स्ट्राइक पर है अभी क्योंकि आपने हाथ उठाया उन पर,
5: तो सर उसकी आंखों में आंसू है
4: जो टीवी और पर
5: वो,
4: है, देख
5: वो,
4: लिया।
5: जो प्रेग्नेंट महिला थी वो क्या जानवर थी क्या?
4: क्या आगे जाके
5: आदमी नहीं करेंगे आप?
4: आगे जाके
5: काम उसका नहीं था?
4: ये सब छोड़िए,
5: हमारे सीएम,
4: ये सब छोड़िए, आप जननायक नहीं हो सर, हाथ उठा के आप जननायक नहीं बनते हो, आप गुंडे ही हो। अगर आप हाथ उठाएंगे तो आप गुंडे ही हो, आप गुंडा आ जाएगा।
0: All right, so that was Ramesh Mhatre on NDTV this morning. The police have still not been able to find him, but the entire incident, this assault on doctors, has caused a lot of anger in the doctors' fraternity. NDTV's Radhika Ramaswamy also spoke to the family of the assaulted doctors. Listen in.
1: I'm joined by mother and father of Shrishti, who was assaulted by the corporator and his aides. Thank you, sir and ma'am, for joining us. I know that your daughter is not in a position to come here, right? How is she now?
6: She's suffering. Still, she's suffering.
1: कुछ इंजरीज है क्या है? मतलब ये परसों हुआ था ना?
6: ये परसों हुआ था, लेकिन इंजरीज से ज़्यादा मैं कह सकती हूँ उसके ऊपर जो मानसिक आघात हुआ है ना, उसमें से वो उभर नहीं पा रही है अभी, और ये सब फेस नहीं कर सकते, इसलिए दैट्स व्हाई शी इज नॉट हियर।
1: शी इज नॉट हियर एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग हर टुडे फॉर जस्टिस। सर क्या कहना चाहेंगे, उस दिन क्या हुआ था और उसके बाद जो एक्शन अभी तक हो रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
7: एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था, जो डॉक्टर सृष्टि ड्यूटी पे थे, डॉक्टर वैभव ड्यूटी पे था, सिस्टर लोग थे, और एक पेशेंट आया था, पेशेंट को उन्होंने कॉपरेट भी किया था, पेशेंट को रेफ़र करने के लिए भी कहा था, लेकिन वो पेशेंट ने कॉरपोरेटर को फ़ोन किया, वो आके बिना पूछे बिना इंक्वायरी डॉक्टर लोगों को, सिस्टर लोगों को, मौसी लोगों को मारने लगा। एक रजिस्टर लेके उसने डॉक्टर के सर पे मारा, उनके साथ में जो गुंडे थे उन्होंने डॉक्टर पे हमला किया, नर्स पे हमला किया, डॉक्टर सृष्टि को भी मारा, एकदम गलत गंदली तरीके से गाली वाली गाली गलौज किया, जिसके वो डिप्रेशन में गई है, उसके दिल में डर पैदा हुआ है कि भाई ये लोग आके हम कभी भी मार सकते हैं, हमको कुछ भी कर सकते हैं।
1: हमारे मैनेजिंग एडिटर ने भी उनसे बात की कल, उन्होंने कहा कि फीमेल डॉक्टर का असॉल्ट हुआ ही नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे थे।
6: कौन बोल रहा है सर?
1: ये मात्रे,
6: और जो सीसीटीवी फुटेज में दिख
1: रहा है, एग्जैक्टली
6: वो क्या है, वो
1: कॉन्फिडेंस
6: है ना, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की
1: वही हमने पूछा,
6: जो पत्रकार है वहाँ पे उन्होंने पूछना चाहिए कि जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है
1: वो कि एंगल गलत है, ऐसा
6: ऐसे कैसे गलत है जो आप मार रहे हैं उसके ऊपर,
1: करेक्ट,
6: टेबल बीच में नहीं आता तो उसके ऊपर अटैक करने वाले थे वो लोग।
1: योर मैसेज टू द गवर्नमेंट, टू द पुलिस, यू नो एज फार एज वॉट इज हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे, व्हाट्स योर मैसेज, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल द स्टेट गवर्नमेंट?
6: आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी बच्चा हो, कोई भी डॉक्टर जो ड्यूटी पे है, जो भी मेडिकल स्टाफ है, उनके ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन कड़क से कड़क कार्रवाई, जो भी अभी इंसिडेंस हुए उसके ऊपर करेगा तो एक अच्छा मैसेज जाएगा सोसाइटी में।
7: प्लीज डॉक्टर लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहिए, गवर्नमेंट ने देना चाहिए, सिक्योरिटी देना चाहिए, खास करके महिला डॉक्टर, सिस्टर्स, मौसी लोग, ये लोग को प्रोटेक्शन देना चाहिए, जिसके वजह से उनके दिल में जो डर है वो निकल जाए, और कभी भी किसी भी हमला हो तो उसके ऊपर पुलिस तुरंत एक्शन ले और उसको अंदर डाले कि उसको कुछ भी करने से वो डरे, ये भूमिका पुलिस शासन ने लेना चाहिए।
1: थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू फॉर स्पीकिंग टू अस, थैंक यू।
0: All right, so there you heard the family. Now the Maharashtra government has taken note of NDTV's coverage of the assault on the woman doctor by a Shiv Sena corporator, Ramesh Mhatre. Three people, as we said, have been arrested. The Shiv Sena MP, Shrikant Shinde, condemned the assault, saying such behavior is unacceptable, confirming that a police case has been registered, and he assured that strict action will be taken. Meanwhile, Shiv Sena MLA Sanjay Gaikwad defended the corporator and said that doctors are just after their salaries. Shiv Sena UBT MLA Aditya Thackeray targeted the Mahayuti government, questioning whether Chief Minister Devendra Fadnavis will tolerate such gundagardi of an ally, and demanding action against the corporator. Congress too slammed the Mahayuti government over this incident, demanding strict action be taken.
1: Mr. Pawar, what exactly happened inside? You met with some of the victims, I believe, some of the doctors as well. If you can take us through what the demands of your party are.
8: No, we met some of the victims as well as their parents also. Vaibhav, you know, if you would have seen the video, this Ramesh Matre is a corporator who is in power in Kalyan Domain.

0: डोंबिवली महानगर पालिका एंड ही इज फ्रॉम अ पार्टी विच इज ऑल्सो इन पावर इन महाराष्ट्र स्टेट दैट इज एकनाथ शिंदे साहब्स पार्टी. वॉट हैज हैपन्ड इज टू डेज बैक ही हैड कम टू दिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड ही लिटरली यू नो हिट all the nurses as well as doctors in this particular hospital for no reason, and one of the person is critical. When I try to speak to that doctor, he is so scared that he is not able to speak also. Now after talking to all the nurses and all, what they are saying, we want protection. Plus this Ramesh Mhatre has a criminal background.
1: लोकशाही प्रक्रिया में जिस तरह से अगर हम लोग काम करते हैं तो काम करते समय अगर किसी से दिरंगाई होती है तो उसके लिए अपीलिंग अथॉरिटी है, कंप्लेनेंट अथॉरिटी है, उनके पास हम लोग जाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे तो सही रहेगा. हम अगर मारपीट पे आएंगे तो ये बात ठीक नहीं है. जैसा कि लोकशाही प्रक्रिया में हम लोग जबकि पॉलिटिकल वर्कर है तो हम लोगों के लिए बहुत सारी आचार संहिता रहती है जिसका पालन करना ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है. डॉक्टर्स को हम लोग अपील करेंगे, एक घटना घटी है तो उसके लिए जो कुछ कार्रवाई करनी चाहिए वो तो कार्रवाई होगी. बाकी अभी तो बारिश चल रही है, बारिश इतनी चल रही है कि डॉक्टर्स की ज़रूरत अभी हमें है, समाज को है, तो इसके लिए ज़रा थोड़ी सी धीरज रखिए. जो गलत है उसके लिए जो कुछ कार्रवाई होगी हो जाए.
2: हम लोग ने इसमें टीवी पे देखा है, अभी साहब हमारे उसके ऊपर निर्णय ले लेंगे क्या बात हुआ, किस तरह से ऐसा किया और क्यों किया, नहीं करना चाहिए, ये बात सही है और हमारे साहब उसका एक्शन ले लेंगे. बस हुआ
3: पीडी वगैरह,
2: लेकिन उसका भी एकनाथ शिंदे साहब कोई ना कोई तरीके निकले.
4: रमेश मात्रे का मैंने वीडियो कोई महिला डॉक्टर को मारते हुए नहीं देखा है. जहाँ मारपीट हो रही है वो दो जेंट्स में हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी सिविल हॉस्पिटल है, मैं 40 साल से मेरा उन लोगों से संपर्क है. जिस तरह से हम सरकारी कर्मचारी, हमारा पगार चालू है, पेशेंट आए जाए, पेशेंट मरे या उसके ट्रीटमेंट ना हो, ये सारी कर्मचारियों की मानसिकता मैंने आपको से देखी है. इसी वजह से एखादे पेशेंट की अवहेलना देखने के बाद में, उसकी गंभीर स्थिति देखने के बाद में किसी को गुस्सा आ सकता है, बट मैं उनका समर्थन करूँगा नहीं. शायद वो चाहते तो वो अलग मार्ग से करते थे, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल की परिस्थिति बदलना भी जरूरी है.
5: The government and I have asked the chief minister to take action, not only to arrest that co-operator Ramesh Mhatre of the Minde Ghat, but also to disqualify him from the post of the co-operator, arrest him and parade him across Dombivli and Kalyan, so that everybody knows that you cannot attack anybody like this, especially a doctor or a nurse, be it a female doctor or a male doctor or a nurse. Now the question, the bigger question is, even if the chief minister wants to arrest this co-operator, even if the chief minister wants to disqualify this co-operator, can he and will he do that? Because his hands are tied, because the central BJP stands with Fakenath Minde and not with Devendra Fadnavis.
6: All right, now do remember this entire issue happened, this altercation at the hospital, because the co-operator was demanding a bed for a baby and a pregnant mother. Let's just listen into what the mother of that woman had to say, where she defended the co-operator.
7: 6 बजे से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे, पाव पड़ रहे डॉक्टर के पास. अब वो भी लेडीज है ना, वो लेडीज के ऊपर लेडीज जान नहीं बचा सकती, तो फिर क्या, वो डॉक्टर हम लोग भगवान मानते हैं, मैं बोलती भी उनको.
8: लेकिन जिस तरीके से दादा के कार्यकर्ता आते हैं, दादा खुद आते हैं, एक तरीके से हाथापाई होती है, वो कितना सही लगता है आपको?
7: सही नहीं है, गलत नहीं, सही भी नहीं है. वो लोग ने बहुत दादा के ऊपर गलत किया है, इसीलिए दादा ने बच्चा समझ के, तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, बच्ची के जान जाएंगे, इसीलिए दादा ने उसको ऐसा मारा है. नहीं तो कुछ भी नहीं, इतना वो लोग ने बहुत लंबा खींच के लगाया है.
6: The Federation of All India Medical Association has expressed its strongest condemnation of the brutal assault on the doctors, nurses and healthcare workers at the KDMC Shastri Nagar Hospital in Maharashtra. Listen in to what they had to say.
9: We are receiving complaints from Maharashtra and various other states of the country that there is no security. The security guards who works in a hospital are merely retired officials of paramilitary forces who are just making sure that the cars are parked in a right way. Whenever something like this happens, there is no security. And when some politicians like this, some corporator who is on the one of the topmost post, and does something like this, then FIR is not done, police does not take action, and the entire matter, if the media would have not raised this issue, this matter would have gone in silent and nothing must have been done. And even right now I was just hearing the arrogance and the goonism that is still there.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
6: सरसों से सरसों। थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
0: ये आप

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।

0: छोड़ो जुबान केसरी,
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसों
6: से वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
8: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
9: देश का टायर जेके टायर।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
10: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
12: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
13: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: वी आर ओवर जिमी।
9: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
10: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
12: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
13: अरे मेरे राजा।

0: blamed Shiv in that, which is why I'm mentioning it here on NDTV. You know, today Shiv should talk to them. What happened to the media? Wo plumber tha. Wo activist tha. Wo separatist hai. See, we never know. See, you have to ask these uncomfortable questions. Point number two, in 2024, the Indian government had said and warned to the Canadian government, you have a border security officers who are helping the Khalistanis and these gangs. What did they say? Oh, these third world Indians. Today, the Americans say the same thing in the Dhanda indictment. I think it was point number five in the indictment. Oh, now the sudden, the same Canadian media, hi, Canadian border security officials are involved in it. What nonsense. When the Indians were saying it, oh, you guys are, you know, third world media, Godi media, look our report. The Americans said, nahi, you know, Big Brother has said it. We have to salute whatever Big Brother says. I don't take these people seriously anymore.
1: You know, it says a lot that you just have a change in government and everyone changes tune. Such serious allegations which were leveled earlier, you come a full 180 degree, and which is why in the future, when you have such claims being made by so-called first world countries and people back home latch onto those claims and say that the Indian government stands exposed or stands discredited, maybe we should take or learn to take all of these claims also with a pinch of salt, because we have one glaring example right in front of us. For the time being, for putting this all in context, thank you very much, gentlemen, for joining us. And now our focus on another big story. Uttarakhand, even as the final SIT report in the Ram Mandir donation theft probe is awaited, similar charges have now emerged from Badrinath Dham. That's right, the donations at Badrinath are now under the scanner after complaints emerged in the beginning of July. After an internal investigation, the Badrinath Kedarnath Temple Committee has now confirmed that at least one office staffer has been suspended in the matter, and an FIR has also been filed. Pramod Nautiyal, a personal assistant in the Badrinath Kedarnath Temple Committee, has been booked under sections for criminal breach of trust and theft of property by an employee. A three-member inquiry committee has also been set up, which will submit its report within 2 weeks. But the real question now remains, is a full shake-up now required in the working of every temple across the country? We need much greater scrutiny and an oversight mechanism to ensure that no such crimes, no such theft, no such pilferage is allowed to take place in any other temple anywhere in India.
2: कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए, जो भी देखे, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी, कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है. ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीजों को करे.
3: पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि वहां पर कोई ऐसे चोरी का एक मामला प्रकाश एक संगठन के द्वारा भी कहा गया था, वहां पर एक कमेटी गठित की गई. उसके बाद जब पूरी जांच हुई तो उस जांच में उसको दोषी पाया गया और उसके खिलाफ जो है उसको निलंबन की प्रक्रिया की गई.
1: All right, joining us live from Dehradun is my colleague Kishore Rawat. Kishore, ये बताइए कि action तो हो गया है, पर चोरी कितने की हुई है, किस तरह की हुई है, किस चीज की हुई है?
4: बिल्कुल, ये सवाल उठता है कि चोरी हुई है तो कितने की हुई है. जो चढ़ावा चढ़ाया था आम लोगों ने, जो अपनी मन्नतें पूरी करने पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसका कितना हिस्सा चुराया है, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया है. जो गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में तीन सदस्य कमेटी है वो कल बद्रीनाथ पहुँचेगी और वो इस बारे में जाँच करेगी. इससे पहले जो BKTC ने चार सदस्य कमेटी का गठन किया था, उन्होंने अपनी जो प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की है उसमें यही बताया है कि जो प्रमोद नौटियाल है, जो निजी सहायक है, वो CCTV फुटेज में मोबाइल फ़ोन के साथ कुछ हाथ में लेते हुए बाहर निकला है. जब उसे कारण बताओ नोटिस दिया और पूछा कि आपके हाथ में मोबाइल के अलावा क्या था, वो जवाब नहीं दे पाया. कई बार पूछने पर जवाब नहीं दे पाया तो उसके बाद उसको निलंबित किया गया है और जोशीमठ जो बद्रीनाथ जो BKTC का ऑफिस है उसमें अटैच किया है. इसके अलावा बद्रीनाथ थाने में ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, BNS की धारा 306 और 316 के तहत दर्ज किया है. अब जो कमेटी है, यानी जो उत्तराखंड सरकार ने जो कमेटी गठन की है तीन सदस्य, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर है और दो IAS अधिकारी और है, वो बद्रीनाथ में उन 32 CCTV कैमरों से खंगालेंगे कि आखिर जो पैसा चोरी किया गया और उससे पूछताछ भी की जाएगी, क्योंकि अब मुकदमा दर्ज

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: वी आर ओवर जिमी।
9: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
10: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
12: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
13: अरे मेरे राजा।
14: सबका राजा प्योर मसाला।
15: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
16: When markets close, clarity matters as much as speed.
15: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
16: Because the last hour today gives you the head start you need tomorrow.
15: Join us before every closing bell
16: on India Market Close.
17: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV Newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: टू नेशंस वन डिफाइनिंग विजन फ्रॉम क्रिटिकल सेमीकंडक्टर्स एंड हाई स्पीड रेल टू सिक्योरिंग द वास्ट वाटर्स ऑफ द इंडो पैसिफिक द ब्लूप्रिंट of the world's most critical partnership is taking shape. Together, the visionary minds, rewriting global diplomacy, driving economic power, and forging a massive manufacturing future. NDTV presents the Indo-Japan Strategic Dialogue.
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
4: They say morning shows the day. Markets often have other plans. By midday, the story can be very different. That's when the right insights helps you rethink the day. Trades, trends, the moves that matter. Join me, Nisha Poddar, for Markets at 12, your edge for every move.
5: The Shiv Sena Shinde Fashion Corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
6: The thug you see is Shinde Sena Corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy, Ramesh Mhatre?
7: We learned that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
8: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aap to kisne haq diya haath uthane ka?
9: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहाँ भी अन्याय हो,
8: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
9: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
8: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
9: प्रशिक्षण हम हमारे
8: नहीं मांगेंगे
9: सर।
10: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, corporator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
11: Summer mein balti to chahiye for your pasina.
12: Balti.
13: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
14: कुछ तो बात है इस दिल में।
15: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
14: कुछ तो बात है इस दिल में।
16: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
17: सरसों से सरसों।
18: We are over, Jimmy.
19: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
20: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
21: देश का टायर जेके टायर।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
22: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
23: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
24: अरे मेरे राजा।
25: सबका राजा आर प्योर मसाला।
5: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
26: When markets close, clarity matters as much as speed.
5: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
26: Because the last hour today gives you the head start you need tomorrow.
5: Join us before every closing bell
26: on India Market Close.
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world.
0: Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: Good evening and welcome. You're on India Matters this Wednesday night. Tonight is an episode of absolute impact because 24 hours ago, the clock began ticking here on India Matters, right here on this show yesterday. And that's why we begin with how this man has finally been arrested thanks to a big NDTV impact that began last night right here on this show. We also have an exclusive interview with Petroleum Minister Hardeep Singh Puri on the entire E20 debate. That's the big lineup right here tonight on India Matters. Let's begin with our top story tonight. Nine hours, viewer. That's how long it took. Just 9 hours after I asked and interrogated Shiv Sena co-operator Ramesh Mathre here on NDTV this morning at 8:30. The police finally moved in and arrested him just a couple of hours ago. It was a full 48 hours after his shockingly violent assault on doctors and nurses at a government hospital in a Mumbai suburb where he is an elected representative for the ruling Shinde Sena. Now, let's be clear tonight. The government and police came under immense pressure to act and sustained scrutiny centered around NDTV's unwavering spotlight on this story, ensured that this was not another Sena-slapping incident that quietly disappeared from the headlines. Because this kind of vigilante politics is hardly new, viewer, to Maharashtra. Across the different Sena factions over the decades, Uddhav Sena, Shinde Sena, Maharashtra Navnirman Sena, street muscle and intimidation have too often been worn as political badges of honor. It still is. But this time, Eknath Shinde's co-operator went too far. Perhaps the hope was that this would blow over like so many other episodes of political thuggery. But two changed the equation. First, the brazen assault on a woman doctor, Dr. Srishti Baviskar, and other healthcare workers struck a nerve across the country. Doctors, women and ordinary citizens looked at that video and saw not power, but cowardice. Second, once this story was picked up by us here on NDTV, it became impossible to ignore. Other media had no choice but to follow, and public outrage only grew louder. Now, I will not claim victory tonight. Holding the powerful to account is our job, but I do want to assure every doctor, every nurse, and every citizen watching tonight that we will not move on simply because an arrest has been made. Ramesh Mathre is no longer just another Sena thug. He has become a symbol of everything people are tired of and hate about our politics. The bullying, the entitlement, the violence. And today India is saying one thing loudly and clearly, enough is enough. And like I said, just 10 hours ago, a 26-minute interview by me of Ramesh Mathre. He chose to take my questions and he probably regretted it because a short while later, he was arrested. Take a look. And joining me live from Mumbai tonight is Ramesh Mathre, co-operator of the ruling Shiv Sena Shinde faction in Maharashtra, who was caught on CCTV camera along with his accomplices thrashing lady doctors and nurses inside a hospital in Dombivli Kalyan. Ramesh ji, NDTV se baat karne ke liye dhanyawad, lekin mera pehla seedha sawal aapse hai, Ramesh ji. Ye jo video jo samne aaya hai, jo NDTV ne break kiya hai. Seedha sawal hai, Ramesh ji. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Lady doctors, mahila doctors aur nurses pe haath uthate hue, kya aapko sharam nahi aati?
1: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है, लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया।
0: वीडियो तो सामने है सर, वीडियो तो सामने है हमारे।
1: नहीं, उसका फोन कान से हटाया हमने।
0: सर वीडियो
1: फोन कान से हटे, फोन पे बात कर रहे थे, हमसे बात ही नहीं कर रहे थे वो।
0: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठाने
1: का? फोन के ऊपर मारे, फोन रखो।
2: आपको आपको किसने
1: हम शिवसैनिक है, लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते।
2: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर डॉक्टर
1: वो जो बता रहे हैं, वो जो बता रहे
2: वैभव पे आपने हाथ उठाया होगा,
1: लेकिन वो जो
2: गुंडे आपके
1: फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया,
2: अलग नहीं किया आपने, उसके हाथ और गले
1: हमसे बात नहीं कर रही थी।
2: ये
1: वो
2: वीडियो पे आ रहा है, ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते।
1: गले पे नहीं मारा है, कान में फोन रखा था, फोन के ऊपर हमने झटका दिया के फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से।
2: रमेश जी
1: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन।
2: मेरा सवाल सुनिए। चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा, आप फोन हटा रहे थे, आप एक कॉर्पोरेटर हो, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का, आपको किसने हक दिया?
1: हमको हक हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया, जहां भी अन्याय हो वहां आप अपना तरीका दिखा सकते हो।
2: हाथ उठाने का हक बालासाहेब
1: हमारे भी
2: आपको
1: वहां एक,
2: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
1: अन्याय के खिलाफ कुछ भी हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया। आप
2: सर ये वीडियो तो देखिए,
1: क्या वो डॉक्टर एक पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या? देखने दो ना, पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था, क्या हो रहा था वो सुनिए। हमारे
2: 20 सेकंड, मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, आप बताइए आपने ऐसे महिला डॉक्टर और नर्सेस पे हाथ क्यों उठाया? 20 सेकंड में बताइए।
1: दो मिनट दीजिए,
2: उसके बाद मैं सवाल करूंगा।
1: हाँ, वहाँ एक लेडी डॉक्टर प्रेग्नेंट थी, एक लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी डे पूरा हुआ था, उसको लेबर पेन चालू हुआ था, उसका पेट में वो बच्चों ने टूल पास किया था, क्रिटिकल कंडीशन थी और उसको वहाँ बेड नहीं था करके उसको साइन भेज रहे थे। पूरा मुंबई बारिश में डूब गया था, कॉलेज बंद था, स्कूल बंद था, ऑफिसेज बंद थे, पूरा ट्रैफिक जाम था और बारिश इतना था कि डोंबिवली से निकलने के लिए 3 घंटा लगता था और उसके पास 10 मिनट भी नहीं था और ना वो हमारे CMO को फ़ोन लगा रहे थे, ना हमको नंबर दे रही थी, तो हम क्या करें? नंबर नहीं दे रहे थे करके वो डॉक्टर के ऊपर
2: जो महिला डॉक्टर पे हाथ उठाया,
1: फिर डॉक्टर ने जो नंबर
2: महिला डॉक्टर
1: नहीं उठाया हमने।
2: अगर बेड अवेलेबल नहीं है क्या आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं फोन कर सकते? हाँ, आप एक बेचारे डॉक्टर पे क्यों हाथ उठा रहे? नर्सेस और डॉक्टर्स पे क्यों हाथ उठा रहे? आपका ही सरकार है रमेश जी,
1: बेड अवेलेबल नहीं है ना,
2: क्यों नहीं फोन कर रहे?
1: सुनिए मेरा बात भी सुनिए जरा, अगर बेड अवेलेबल नहीं है ना तो सर एक कानून है महापालिका का कि अगर अपने पास जो सुविधा नहीं है तो
2: अरे वाह सर,
1: सुविधा लेके पेशेंट को
2: आपने कानून डाला,
1: बराबर
2: इसके लिए बहुत तालियां आपको कि आपने कानून का शब्द
1: राहत देना और यही बात हम उनसे बोल रहे थे कि आप में हाँ तो हाँ ऐसा है हमारे महापालिका में और कई बार हमने किया है क्योंकि मेरा वार्ड में वो हॉस्पिटल आता है तो वहाँ मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, पूरा ग्रामीण लोकसभा वार्ड है ना वहाँ से बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं और ऐसा कई मामले हमने सॉल्व किया है, लेकिन ये नए डॉक्टर है बहुत घमंडी है और उन्होंने मैडम का नंबर नहीं दिया CMO का हमारा। फिर से वो जो घटना घटी ना वो लेडी के ऊपर हाथ हमने नहीं उठाया और कभी ना उठाएंगे, लेकिन जो डॉक्टर के साथ हुआ ना तभी हमको नंबर मिला और हमारे सुनिए बात मेरा सर मेरा बात सुनिए।
2: सुन लिया जो आप बोल रहे हैं, आप मैंने सुन लिया, आप बेसिकली ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि आप एक जननायक हो, ठीक है, आप एक हीरो हो, आपने एक नायक हो जिसने नागरिकों का जो का जो कंसर्न डिमांड थे, आपने एक महिला डॉक्टर और नर्स पर हाथ उठा के आपने अपना फर्ज निभाया है, ये आप बोल रहे हैं। मैं आपसे
1: सरासर झूठ है, हमने किसी नर्स के ऊपर और किसी नहीं नहीं सर, एक कैमरा में दिखता रहेगा, लेकिन मैं फोन हटाया वो तो आप
2: रमेश जी आपके पार्टी आपके सरकार आपके समर्थकों को शर्मिंदा मत कीजिए, आपने जो किया है ये पूरे पूरा सामने है, सब देख रहे हैं एनडीटीवी पर, ये वीडियो सामने है, आपका हाथ दिख रहा है,
1: नहीं,
2: जो गुंडे हैं आपके साथ है,
1: नहीं, मैं फोन के ऊपर, उसके फोन के ऊपर फोन हटाया झटके से,
2: एक रजिस्टर लेके किसी के सर पे मारा है,
1: झटके से फोन हटाया,
2: फोन पे मारा है,
1: फोन पे मत रहो, बिजी रहो, पेशेंट के बारे में सोचो, यही बोल रहा था, बम्बई कैसे जा सकते है,
2: फिर से मैं पूछता हूँ आपसे, आपको हक किसने दिया? आप ऐसे हॉस्पिटल जाके हाथ उठा के किसी पर मारना, फोन साइड पे करना, जो भी आप बोल रहे हैं, आपने हिंसा इस्तेमाल किया,
1: तो क्या आप डॉक्टर को परमिशन दिया है, डॉक्टर को परमिशन दिया है उधर ही जगह पे मारने का?
2: इधर उधर मत कीजिए, इधर उधर मत,
1: डॉक्टर को किसने हक दिया पेशेंट के केयर ना करना? डॉक्टर किस लिए होता है? भगवान नहीं आ सकते इसके लिए भगवान ने डॉक्टर बनाया?
2: गुंडे हो आप, कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, ये तो साफ कर दीजिए, आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो? अगर आप कॉपरेटर हो तो कानून के अंदर ही काम करना पड़ेगा आपको।
1: आप
2: गुंडे कैसे बन सकते हो?
1: सीधा जवाब देगा,
2: मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे,
1: जान बचाने के लिए
2: जो आपने जो किया है,
1: मेरे को डॉक्टर गुंडे लगे,
2: सर अगर डॉक्टर गुंडे है वो ठीक है, आप नहीं कर सकते, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप रूलिंग पार्टी के कॉपरेटर हो, आप कैसे कर सकते हैं ये सब? अगर किसी ने बेड नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, अगर किसी ने किसी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया,
1: कुछ नहीं किया है,
2: आप पुलिस के पास जा सकते हो, आप हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो, आप किसी के पास जा सकते हो, आप रूलिंग पार्टी के कॉपरेटर हो, आप हाथ कैसे उठा सकते हो आप नागरिक पर?
1: अगर ये हम ऐसा नहीं करते, जो अगर हम फोन नंबर मैडम का लिया और मामला आधा घंटे में सोल्व हुआ, डिलीवरी भी हो गया, मैडम ने शिफ्ट किया पेशेंट को, हमारे सीएमओ ने
2: मतलब
1: मैडम उसके साथ बात करने के बाद
2: आधा घंटे में
1: मामला कैसे सोल्व हो गया, और ये 5 घंटे से ये क्यों उसको रखड़ा रहे थे?
2: रमेश जी शर्मिंदा मत,
1: डॉक्टर
2: आप बेसिकली
1: रखड़ा के रखा था, ना कोई डिसीजन ले रहा था,
2: तो फिर आप ये बोल रहे हैं,
1: और इसके लिए फिर क्या कर सकते थे हम लोग?
2: मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हो एनडीटीवी पर कि आगे जाके भी अगर किसी को बेड नहीं मिला,
1: लड़की थी
2: आगे, सर सर सर
1: डिलीवरी डेट पे आ गया था,
2: ये सब
1: लेबर पेन शुरू हुआ था, ये सब बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे,
2: डोंट प्ले द कास्ट कार्ड कम्युनिटी कार्ड, ये सब
1: उसके डॉक्टर
2: पर छुपिए आप, दलित कार्ड ये कार्ड वो कार्ड,
1: उसमें हम उसके ऊपर स्टिकअप रहेंगे सर?
2: नहीं नहीं नहीं,
1: हम उसके ऊपर स्टिकअप रहे, हम पब्लिक
2: हम मूर्ख नहीं है,
1: हमको चुन के
2: दिया
1: डॉक्टर ने, चुन के नहीं दिया है,
2: आपको नहीं जाने देंगे,
1: नहीं हमको पब्लिक ने चुन के दिया है सर,
2: आपको
1: सर सर
2: सवाल सुनिए,
1: चुन के दिया,
2: सवाल सुनिए,
1: लड़ेंगे ना
2: रमेश माथुर,
1: डॉक्टर का तो हम सम्मान करते हैं कि कोरोना के सीजन में, कोरोना का
2: आपका जो सम्मान है डॉक्टर्स के लिए, मैंने देखा
1: बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया,
2: डॉक्टर्स के लिए जो
1: हम जिसको हम कभी भूलेंगे नहीं,
2: लेकिन ये डॉक्टर्स के लिए सम्मान जो है आपके पास
1: बेकार था,
2: साफ साफ
1: हमारा पेशेंट मर सकता था उधर जगह पे, मरने की नौबत आए थे हमारे पेशेंट की सर,
2: सीधा सवाल
1: ऐसा नहीं होना चाहिए,
2: क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं
1: सर,
2: क्योंकि जब ये इंटरव्यू शुरू हुआ था आपने एक शब्द इस्तेमाल किया अफसोस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी कि क्योंकि अभी जब आपका टोन में आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं निकाल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि आप एक मैसेज भेज रहे हैं कि आगे जाके भी अगर ऐसा कुछ
1: आप हमको गुंडा बोल रहे हैं, किसने दिया बोल रहे हैं गुंडा बोल रहे हैं
2: सर,
1: हम कौन सा टोन वापरेंगे?
2: मैं सीधा सवाल सुनिए,
1: हमको शर्म नहीं आई,
2: सवाल सुनिए,
1: पब्लिक ने हमको चुन के दिया ना, डॉक्टर ने चुन के दिया सर,
2: नहीं नहीं आप दो चीज बोल रहे हैं,
1: सीधा पूछिए,
2: एक चीज सुनिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये है कि अगर आगे जाके भी ऐसा कुछ होता है क्या आप ऐसे ही मारेंगे डॉक्टर्स को, या आपको अफसोस है कि ऐसा हुआ है?
1: नहीं सर, एक मेरा
2: बात नहीं है, बिल्कुल अफसोस नहीं है,
1: आप मेरे को एक मिनट दो, आधा मिनट,
2: नहीं सीधा सवाल सर,
1: ऐसा
2: सवाल है, सीधा सवाल,
1: मेरे को
0: Okay, we've got some fresh breaking news coming in now. Ramesh Mhatre, the Shinde Sena corporator, who was arrested for that shocking assault and after NDTV picked up his story, has been hospitalized following the reported deterioration in his arrest. Is this some new drama or is he genuinely ill? The police have confirmed that Shinde Sena co-operator Matre, this thug, has been admitted to the Thane Civil Hospital. Remember, he was arrested about 3 hours ago. The police had to send Ramesh Matre to the hospital because medical services were unavailable at the KDMC-run hospital where he had shown his thuggery 2 days ago. Look at the irony of this, viewer. He could have been treated at the hospital where he had gone and slapped a lady doctor and slapped a male doctor and people on staff. He could have been treated there, but because the doctors there are on strike following that assault, he has had to be sent to the Thane Civil Hospital. Sujata Dwivedi is live with me for more on this. Sujata, what is this? Is this some bahana? Is this some VIP treatment being given to Ramesh Matre? Or is he genuinely ill? What's going on?
3: Well, yes, what police have told us so far that Matre has been shifted to Thane Civil Hospital. But the irony here that the people of the state's fraternity who he hit and then shamelessly refused to accept his fault, now he'll be treated by the people of the same fraternity but not in the same hospital, because both hospitals, the Rukmini Bai as well as the Shastri Nagar hospitals, have suspended services as part of their protest against the assault of the fellow doctor. Now the timing of Matre's hospitalization has also sparked fresh questions, which is why police insists that the transfer was based solely on the medical grounds and the advice. The development has also led to a debate over whether the accused is genuinely unwell or if he is receiving preferential treatment because of his political position. So, of course, he's being treated, but soon we're expecting fresh reactions to come in and also the police officials to update us further. However, they have not yet indicated any special concessions and they say that standard medical procedures are being followed in this case. Back to you.
0: All right, Sujata, this is an interesting development late tonight. The co-operator of the Shinde Sena, who was not too sick to slap and throw punches and kick and beat up doctors, both men and women, inside the hospital, is now too sick to face police custody. That is the VIP entitlement of the thugs of the Shinde Sena. We'll come back to that story in just a bit. In the wake of my reporting on this thug Sena that you just saw, co-operator Ramesh Matre, viewer, I have received literally thousands of messages across my social media from doctors across the country commending NDTV's coverage and saying that doctors have faced the same thing in various degrees. And this isn't anecdotal, but supported by data now. The fact that this assault on camera is just one tiny statistic in a truly frightening epidemic that far too few people are talking about. The everyday violence faced by doctors across India. My colleague Ankita Tiwari from the NDTV Data Fight team came to me before this show with numbers from a survey published by the National Medical Journal of India just a few weeks ago. It reveals just how widespread the problem actually is. Take a look at these shocking numbers, viewer, if you're ready to face them. A staggering 80% of Indian doctors sampled in this survey say they have either experienced or witnessed violence at the workplace at some point in their careers. 92% of doctors have faced verbal abuse of some kind. Almost half, 46%, say they have suffered physical assault. Even more disturbing, 50% say they have faced violence more than once, while 43% have sustained physical injuries during these attacks. The danger is greatest where doctors are needed the most. 53% of these incidents take place in emergency departments where emotions run high and split-second decisions often mean the difference between life and death. In an overwhelming 92% of the cases in this survey, the perpetrators are patients, relatives, or attendants. But perhaps the most worrying numbers come after the violence. 51% of doctors, viewers, say no action is taken even after they report the incident of violence against them. 45% of doctors polled in this survey say they received no support from their employer. 53% did not report incidents because they had no faith in the system. And 21% stayed silent because they feared negative consequences for themselves. These are not isolated incidents, viewer. They point to a culture in which violence against healthcare workers has become sickeningly normal. These shocking figures make one thing abundantly clear. Doctors in India battle far more than disease in the course of their work. They battle abuse, intimidation, violence, and far too often a system that fails to protect them. That is the reality of what we're facing right now. But the onus and that one statistic that has made this a national headline in the wake of NDTV's coverage is Ramesh Mhatre, the Shiv Sena corporator who found it fit to thrash lady and men doctors inside the KDMC hospital.

0: Good evening and welcome. You're on India Matters this Wednesday night. Tonight is an episode of absolute impact because 24 hours ago, the clock began ticking here on India Matters, right here on this show yesterday. And that's why we begin with how this man has finally been arrested thanks to a big NDTV impact that began last night right here on this show. We also have an exclusive interview with Petroleum Minister Hardeep Singh Puri on the entire E20 debate. That's the big lineup right here tonight on India Matters. Let's begin with our top story tonight. Nine hours, viewer. That's how long it took. Just 9 hours after I asked and interrogated Shiv Sena co-operator Ramesh Mathre here on NDTV this morning at 8:30, the police finally moved in and arrested him just a couple of hours ago. It was a full 48 hours after his shockingly violent assault on doctors and nurses at a government hospital in a Mumbai suburb where he is an elected representative for the ruling Shinde Sena. Now, let's be clear tonight. The government and police came under immense pressure to act and sustained scrutiny centered around NDTV's unwavering spotlight on this story, ensured that this was not another Sena-slapping incident that quietly disappeared from the headlines. Because this kind of vigilante politics is hardly new, viewer, to Maharashtra. Across the different Sena factions over the decades, Udhav Sena, Shinde Sena, Maharashtra Navnirman Sena, street muscle and intimidation have too often been worn as political badges of honor. It still is. But this time, Eknath Shinde's co-operator went too far. Perhaps the hope was that this would blow over like so many other episodes of political thuggery. But two things changed the equation. First, the brazen assault on a woman doctor, Dr. Srishti Bhaviskar, and other healthcare workers struck a nerve across the country. Doctors, women and ordinary citizens looked at that video and saw not power, but cowardice. Second, once this story was picked up by us here on NDTV, it became impossible to ignore. Other media had no choice but to follow and public outrage only grew louder. Now, I will not claim victory tonight. Holding the powerful to account is our job, but I do want to assure every doctor, every nurse, and every citizen watching tonight that we will not move on simply because an arrest has been made. Ramesh Mathre is no longer just another Sena thug. He has become a symbol of everything people are tired of and hate about our politics. The bullying, the entitlement, the violence, and today India is saying one thing loudly and clearly, enough is enough. And like I said, just 10 hours ago, a 26-minute interview by me of Ramesh Mathre. He chose to take my questions and he probably regretted it because a short while later, he was arrested. Take a look. And joining me live from Mumbai tonight is Ramesh Mathre, co-operator of the ruling Shiv Sena Shinde faction in Maharashtra, who was caught on CCTV camera along with his accomplices thrashing lady doctors and nurses inside a hospital in Dombivli Kalyan. Ramesh, NDTV se baat karne ke liye dhanyawad, lekin mera pehla seedha sawal aapse hai, Ramesh ji. Ye jo video jo samne aaya hai, jo NDTV ne break kiya hai. Seedha sawal hai, Ramesh ji. क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए क्या आपको शर्म नहीं आती
1: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया
0: वीडियो तो सामने है सर वीडियो तो सामने है हमारे
1: नहीं उसका फोन कान से हटाया हमने
0: सर वीडियो
1: फोन कान से हटे फोन पे बात कर रहे थे हमसे बात ही नहीं कर रहे थे वो
0: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठाने
1: उसका फोन के ऊपर मारे फोन रखो
2: आपको आपको किसने
1: नहीं नहीं नहीं
2: किसी
1: नहीं,
2: पे
1: नहीं,
2: भी,
1: कभी नहीं
2: किसी पे भी हाथ उठ
1: हमारा हम शिवसैनिक है, लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते।
2: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर डॉक्टर
1: वो जो बता रहे हैं वो जो बता रहे
2: वैभव पे आपने हाथ उठाया होगा,
1: लेकिन वो जो
2: गुंडे आपके पास थे
1: फोन के ऊपर, फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया,
2: और उसका अलग किया अलग नहीं किया आपने, उसके हाथ और गले
1: हमसे बात नहीं कर रही थी
2: ये
1: वो
2: वीडियो पे आ रहा है, ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी, आप झूठ नहीं,
1: नहीं
2: बोल सकते हैं, आप झूठ नहीं,
1: नहीं गले पे नहीं मारा है, कान में फोन रखा था, फोन के ऊपर हमने झटका दिया, फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से।
2: रमेश जी
1: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन,
2: मेरा सवाल सुनिए। चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा, आप फोन हटा रहे थे, आप एक कॉर्पोरेटर हो, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का, आपको किसने हक दिया?
1: हमको हक हमारे पार्टी के बाल साहब ठाकरे ने दिया, जहां भी अन्याय हो वहां आप अपना तरीका दिखा सकते हो,
2: हाथ उठाने का हक बाला साहब
1: हमारे भी
2: आपको
1: वहां एक,
2: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
1: अन्याय के खिलाफ कुछ भी
2: नागरिक,
1: हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया, आप
2: सर ये वीडियो तो देखिए
1: क्या वो डॉक्टर एक पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या, देखने दो ना, पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था, क्या हुआ हो रहा था वो सुनिए, हमारे
2: 20 सेकंड, मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, आप बताइए आपने ऐसे महिला डॉक्टर नर्सेस पे हाथ क्यों उठाया, 20 सेकंड में बताइए,
1: दो मिनट दीजिए,
2: उसके बाद मैं सवाल करूंगा।
1: वहाँ एक लेडी डॉक्टर प्रेग्नेंट थी, एक लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी डे पूरा हुआ था, उसको लेबर पेन चालू हुआ था, उसका पेट में बच्चों ने टूल पास किया था, क्रिटिकल कंडीशन थी, और उसको वहाँ बेड नहीं था करके उसको साइन भेज रहे थे, पूरा मुंबई बारिश में डूब गया था, कॉलेज बंद था, स्कूल बंद था, ऑफिसेज बंद थे, पूरा ट्रैफिक जाम था, और बारिश इतना था कि डोंबिवली से निकलने के लिए 3 घंटा लगता था, और उसके पास 10 मिनट भी नहीं था, और ना वो हमारे CMO को फ़ोन लगा रहे थे, ना हमको नंबर दे रही थी, तो हम क्या करें, नंबर नहीं दे रहे थे करके वो डॉक्टर के ऊपर
2: जो महिला डॉक्टर पे हाथ उठाएंगे,
1: फिर डॉक्टर ने जो नंबर
2: महिला डॉक्टर
1: नहीं उठाया हमने,
2: अगर बेड अवेलेबल नहीं है क्या आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं फोन कर सकते, आप एक बेचारे डॉक्टर पे क्यों हाथ उठा रहे, नर्सेस और डॉक्टर्स पे क्यों हाथ उठा रहे, आपका ही सरकार है रमेश जी,
1: बेड अवेलेबल नहीं है ना,
2: क्यों नहीं फोन कर रहे,
1: सुनिए मेरा बात भी सुनिए जरा, अगर अगर बेड अवेलेबल नहीं है ना, तो सर एक कानून है महापालिका का कि अगर अपने पास जो सुविधा नहीं है तो
2: अरे वाह सर,
1: सुविधा लेके पेशेंट को
2: आपने कानून
1: देना, बराबर
2: इसके इसके लिए बहुत तालियां आपको कि आपने कानून का शब्द
1: राहत देना, और
2: कानून का शब्द
1: यही बात हम उनसे बोल रहे थे कि आप में तो हाँ ऐसा है हमारे महापालिका में, और कई बार हमने किया है क्योंकि मेरा वार्ड में वो हॉस्पिटल आता है तो वहाँ मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, पूरा ग्रामीण लोकसभा वार्ड है ना, वहाँ से बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं, और ऐसा कई मामले हमने सॉल्व किया है, लेकिन ये नए डॉक्टर है बहुत घमंडी है, और उन्होंने मैडम का नंबर नहीं दिया CMO का हमारा, फिर से वो जो घटना घटी ना वो लेडी के ऊपर हाथ हमने नहीं उठाया और कभी ना उठाएंगे, लेकिन जो डॉक्टर के साथ हुआ ना तभी हमको नंबर मिला, और हमारे
2: रमेश जी
1: सुनिए बात मेरा, सर मेरा बात सुनिए,
2: सुन लिया जो आप बोल रहे हैं, आप मैंने सुन लिया, आप बेसिकली ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि आप एक जननायक हो, ठीक है, आप एक हीरो हो, आपने एक नायक हो जिसने नागरिकों का जो का जो कंसर्न डिमांड थे, आपने एक महिला डॉक्टर और नर्स पर हाथ उठा के आपने अपना फर्ज निभाया है, ये आप बोल रहे हैं, मैं आप
1: सरासर झूठ है, हमने किसी नर्स के ऊपर और किसी नहीं नहीं सर एक कैमरा में दिखता रहेगा, लेकिन मैं फोन हटाया वो तो आप
2: रमेश जी आपके पार्टी आपके सरकार आपके समर्थकों को शर्मिंदा मत कीजिए, आपने जो किया है ये पूरे पूरा सामने है, सब देख रहे हैं एनडीटीवी पर, ये वीडियो सामने है, आपका हाथ दिख रहा है,
1: नहीं,
2: जो गुंडे हैं आपके साथ है,
1: नहीं, मैं फोन के ऊपर, उसके फोन के ऊपर फोन हटाया झटके से,
2: एक रजिस्टर लेके किसी के सर पे मारा है,
1: झटके से फोन हटाया,
2: फोन पे मारा है,
1: फोन पे मत रहो, बिजी रहो, पेशेंट के बारे में सोचो, यही बोल रहा था, बंबई कैसे जा सकते हैं,
2: फिर से मैं पूछता हूँ आपसे आपको हक किसने दिया?
1: बोलो,
2: जाने का आप ऐसे हॉस्पिटल जाके हाथ उठा के किसी पर मारना, फोन साइड पे करना, जो भी आप बोल रहे हैं, आपने हिंसा इस्तेमाल किया,
1: तो क्या आप डॉक्टर को परमिशन दिया है? डॉक्टर को परमिशन दिया है उधर ही जगह पे मारने का?
2: इधर उधर मत कीजिए।
1: डॉक्टर को किसने हक दिया पेशेंट के केयर ना करना? डॉक्टर किस लिए होता है? भगवान नहीं आ सकते इसके लिए भगवान ने डॉक्टर बनाया?
2: गुंडे हो आप, कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, ये तो साफ कर दीजिए, आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो? अगर आप कॉपरेटर हो तो कानून के अंदर ही काम करना पड़ेगा आपको।
1: आप
2: गुंडे कैसे बन सकते हो?
1: सीधा जवाब देगा,
2: मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे,
1: जान बचाने के लिए
2: जो आपने जो किया है,
1: मेरे को उधर गुंडे लगे।
2: सर अगर डॉक्टर गुंडे है वो ठीक है, आप नहीं कर सकते, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप रूलिंग पार्टी के कॉपरेटर हो, आप कैसे कर सकते हैं ये सब? अगर किसी ने बेड नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, अगर किसी ने किसी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया,
1: कुछ नहीं किया है,
2: आप पुलिस के पास जा सकते हो, आप हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो, आप किसी के पास जा सकते हो, आप रूलिंग पार्टी के कॉपरेटर हो, आप आज कैसे उठा सकते हो आप नागरिक?
1: अगर ये हम ऐसा नहीं करते, जो अगर हम फोन के फोन नंबर मैडम का लिया और मामला आधा घंटे में सोल्व हुआ, डिलीवरी भी हो गया, मैडम ने शिफ्ट किया पेशेंट को, हमारे सीएमओ ने मैडम उसके साथ बात
2: तो
1: करने के बाद
2: आधा घंटे में
1: मामला कैसा सोल्व हो गया, और ये 5 घंटे से ये क्यों उसको रखड़ा रहे थे?
2: रमेश जी शर्मिंदा मत,
1: डॉक्टर
2: आप बेसिकली
1: रखड़ा के रखा था ना, कोई डिसीजन ले रहा था,
2: तो फिर आप ये सुन रहे हैं,
1: और इसके लिए फिर क्या कर सकते थे हम लोग?
2: मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हो एनडीटीवी पर कि आगे जाके भी अगर किसी को बेड नहीं मिला,
1: लड़की थी
2: आगे, सर सर सर
1: ड्यूरी डेट पे आ गया था,
2: ये सब
1: लेबर पेन शुरू हुआ था,
2: ये सब
1: बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे,
2: डोंट प्ले द कास्ट कार्ड कम्युनिटी कार्ड, ये सब
1: पेशेंट को
2: उसके पीछे मत छुपिए आप, दलित कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, उसमें
1: नहीं नहीं, हम उसके ऊपर स्टिकअप रहेंगे सर,
2: नहीं नहीं
1: हम उसके ऊपर स्टिकअप रहे, हम पब्लिक
2: हम मूर्ख नहीं है,
1: हमको चुन के
2: दिया
1: डॉक्टर ने, चुन के नहीं दिया है,
2: आपको नहीं जाने देंगे,
1: नहीं हमको पब्लिक ने चुन के दिया है सर,
2: आपको
1: सर
2: मेरा सवाल सुनिए,
1: चुन के दिया,
2: सवाल सुनिए,
1: लड़ेंगे ना
2: रमेश
1: और डॉक्टर का, तो हम
2: सवाल
1: सम्मान करते हैं कि कोरोना के सीजन में, कोरोना के
2: आपका जो सम्मान है डॉक्टर्स के लिए,
1: बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, जिसको हम कभी भूलेंगे नहीं,
2: लेकिन ये डॉक्टर्स के लिए सम्मान जो है आपके पास
1: बेकार था, हमारा पेशेंट मर सकता था उधर जगह पे, मरने की नौबत आए थे हमारे पेशेंट की सर।
2: सीधा सवाल
1: ऐसा नहीं होना चाहिए,
2: क्या बोल रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं
1: सर?
2: क्योंकि जब ये इंटरव्यू शुरू हुआ था आपने एक शब्द इस्तेमाल किया अफसोस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी कि क्योंकि अभी जब आपका टोन में आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं निकाल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि आप एक मैसेज भेज रहे हैं कि आगे जाके भी अगर ऐसा कुछ
1: आप हमको गुंडा बोल रहे हैं, किसने दिया बोल रहे हैं गुंडा गुंडा बोल रहे हैं
2: सर,
1: हम कौन सा टोन वापरेंगे?
2: मैं सीधा सवाल सुनिए,
1: हमको शर्म नहीं आई,
2: सवाल सुनिए,
1: पब्लिक ने हमको चुन के दिया ना, डॉक्टर ने चुन के दिया सर,
2: नहीं नहीं आप दो चीज बोल रहे हैं,
1: सीधा पूछिए,
2: एक चीज सुनिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये है कि अगर आगे जाके भी ऐसा कुछ होता है क्या आप ऐसे ही मारेंगे डॉक्टर्स को, या आपको अफसोस है कि ऐसा हुआ है?
1: नहीं सर, एक मेरा
2: बात नहीं है, बिल्कुल
1: आप मेरे को एक मिनट दो, आधा मिनट,
2: नहीं सीधा सवाल सर,
1: ऐसा
2: सीधा सवाल है, सीधा सवाल,
1: मेरे को मैं तीन लड़के मेरे को

0: Good evening and welcome. You're on India Matters this Wednesday night. Tonight is an episode of absolute impact because 24 hours ago, the clock began ticking here on India Matters, right here on this show yesterday. And that's why we begin with how this man has finally been arrested thanks to a big NDTV impact that began last night right here on this show. We also have an exclusive interview with Petroleum Minister Hardeep Singh Puri on the entire E20 debate. That's the big lineup right here tonight on India Matters. Let's begin with our top story tonight. Nine hours, viewer. That's how long it took. Just 9 hours after I asked and interrogated Shiv Sena co-operator Ramesh Mathre here on NDTV this morning at 8:30, the police finally moved in and arrested him just a couple of hours ago. It was a full 48 hours after his shockingly violent assault on doctors and nurses at a government hospital in a Mumbai suburb where he is an elected representative for the ruling Shinde Sena. Now, let's be clear tonight. The government and police came under immense pressure to act and sustained scrutiny centered around NDTV's unwavering spotlight on this story, ensured that this was not another Sena-slapping incident that quietly disappeared from the headlines. Because this kind of vigilante politics is hardly new, viewer, to Maharashtra. Across the different Sena factions over the decades, Udhav Sena, Shinde Sena, Maharashtra Navnirman Sena, street muscle and intimidation have too often been worn as political badges of honor. It still is. But this time, Eknath Shinde's co-operator went too far. Perhaps the hope was that this would blow over like so many other episodes of political thuggery. But two things changed the equation. First, the brazen assault on a woman doctor, Dr. Srishti Bhaviskar, and other healthcare workers struck a nerve across the country. Doctors, women and ordinary citizens looked at that video and saw not power, but cowardice. Second, once this story was picked up by us here on NDTV, it became impossible to ignore. Other media had no choice but to follow and public outrage only grew louder. Now, I will not claim victory tonight. Holding the powerful to account is our job, but I do want to assure every doctor, every nurse, and every citizen watching tonight that we will not move on simply because an arrest has been made. Ramesh Mathre is no longer just another Sena thug. He has become a symbol of everything people are tired of and hate about our politics. The bullying, the entitlement, the violence, and today India is saying one thing loudly and clearly, enough is enough. And like I said, just 10 hours ago, a 26-minute interview by me of Ramesh Mathre. He chose to take my questions and he probably regretted it because a short while later, he was arrested. Take a look. And joining me live from Mumbai tonight is Ramesh Mathre, co-operator of the ruling Shiv Sena Shinde faction in Maharashtra, who was caught on CCTV camera along with his accomplices thrashing lady doctors and nurses inside a hospital in Dombivli Kalyan. Ramesh, NDTV se baat karne ke liye dhanyawad, lekin mera pehla seedha sawal aapse hai, Ramesh ji. Ye jo video jo samne aaya hai, jo NDTV ne break kiya hai. Seedha sawal hai, Ramesh ji. क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए क्या आपको शर्म नहीं आती
1: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया
0: वीडियो तो सामने है सर वीडियो तो सामने है हमारे
1: नहीं उसका फोन कान से हटाया हमने
0: सर वीडियो
1: फोन कान से हटे फोन पे बात कर रहे थे हमसे बात ही नहीं कर रहे थे वो
0: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठा
1: उसका फोन के ऊपर मारे फोन रखो
2: आपको आपको किसने
1: हम शिवसैनिक है, लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते।
2: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर डॉक्टर
1: वो जो बता रहे हैं वो जो बता रहे
2: वैभव पे आपने हाथ उठाया होगा,
1: लेकिन वो जो
2: गुंडे आपके
1: फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया
2: नहीं किया आपने उसके हाथ और गले
1: हमसे बात नहीं कर रही थी।
2: ये
1: वो
2: वीडियो पे आ रहा है, ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी, आप झूठ नहीं, नहीं बोल सकते हैं। आप झूठ नहीं बोल
1: गले पे नहीं मारा है, कान में फोन रखा था, फोन के ऊपर हमने झटका दिया, फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से।
2: रमेश जी
1: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन।
2: मेरा सवाल सुनिए। चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा, आप फोन हटा रहे थे, आप एक कॉर्पोरेटर हो, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का? आपको किसने हक दिया?
1: हमको हक हमारे पार्टी के बाल साहब ठाकरे ने दिया। जहां भी अन्याय हो वहां आप अपना तरीका दिखा सकते हो,
2: हाथ उठाने का हक बाला साहब
1: हमारे भी
2: आपको
1: वहां एक।
2: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
1: अन्याय के खिलाफ कुछ भी हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया। आप
2: ये वीडियो तो देखिए,
1: क्या वो डॉक्टर एक पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या? देखने दो ना, पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था, वहाँ क्या हो रहा था वो सुनिए। हमारे
2: 20 सेकंड, मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, आप बताइए आपने ऐसे महिला डॉक्टर और नर्सेस पे हाथ क्यों उठाया? 20 सेकंड में बताइए।
1: दो मिनट दीजिए,
2: उसके बाद मैं सवाल करूंगा।
1: वहाँ एक लेडी डॉक्टर प्रेग्नेंट थी, एक लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी डे पूरा हुआ था, उसको लेबर पेन चालू हुआ था, उसका पेट में वो बच्चों ने टूल पास किया था, क्रिटिकल कंडीशन थी और उसको वहाँ बेड नहीं था करके उसको साइन भेज रहे थे। पूरा मुंबई बारिश में डूब गया था, कॉलेज बंद था, स्कूल बंद था, ऑफिसेज बंद थे, पूरा ट्रैफिक जाम था और बारिश इतना था कि डोंबिवली से निकलने के लिए 3 घंटा लगता था और उसके पास 10 मिनट भी नहीं था और ना वो हमारे CMO को फ़ोन लगा रहे थे, ना हमको नंबर दे रही थी, तो हम क्या करें? नंबर नहीं दे रहे थे करके वो डॉक्टर के ऊपर
2: जो महिला डॉक्टर पे हाथ उठाया,
1: फिर डॉक्टर ने जो नंबर
2: महिला डॉक्टर
1: नहीं उठाया हमने।
2: अगर बेड अवेलेबल नहीं है क्या आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं फोन कर सकते? हाँ। आप एक बेचारे डॉक्टर पे क्यों हाथ उठा रहे हैं? नर्सेस और डॉक्टर्स पे क्यों हाथ उठा रहे? आपका ही सरकार है रमेश जी,
1: बेड अवेलेबल नहीं है ना,
2: क्यों नहीं फोन करते?
1: सुनिए मेरा बात भी सुनिए जरा, अगर अगर बेड अवेलेबल नहीं है ना तो सर एक कानून है महापालिका का कि अगर अपने पास जो सुविधा नहीं है तो
2: अरे सर,
1: सुविधा लेके पेशेंट को
2: आपने कानून देना,
1: बराबर
2: इसके इसके लिए बहुत तालियां आपको कि आपने कानून का शब्द
1: राहत देना और
2: कानून
1: यही
2: का शब्द
1: यही बात हम उनसे बोल रहे थे कि आप में तो हाँ ऐसा है हमारे महापालिका में और कई बार हमने किया है क्योंकि मेरा वार्ड में वो हॉस्पिटल आ रहा है आता है तो वहाँ मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। पूरा ग्रामीण लोकसभा वार्ड है ना वहाँ से बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं और ऐसा कई मामले हमने सॉल्व किया है लेकिन ये नए डॉक्टर है बहुत घमंडी है और उन्होंने मैडम का नंबर नहीं दिया CMO का हमारा। फिर से उसको वो जो घटना घटी ना वो लेडी के ऊपर हाथ हमने नहीं उठाया और कभी ना उठाएंगे लेकिन जो डॉक्टर के साथ हुआ ना तभी हमको नंबर मिला और हमारे सुनिए बात मेरा सर मेरा बात सुनिए।
2: सुन लिया जो आप बोल रहे हैं आप मैंने सुन लिया। आप बेसिकली ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि आप एक जननायक हो, ठीक है, आप एक हीरो हो, आपने एक नायक हो जिसने नागरिकों का जो का जो कंसर्न डिमांड थे आपने आपने आपने एक महिला डॉक्टर और नर्स पर हाथ उठा के आपने अपना फर्ज निभाया है ये आप बोल रहे हैं। मैं आपसे
1: सरासर झूठ है, हमने किसी नर्स के ऊपर और किसी नहीं नहीं सर एक कैमरा में दिखता रहेगा लेकिन मैं फोन हटाया वो तो आप
2: रमेश जी आपके पार्टी आपके सरकार आपके समर्थकों को शर्मिंदा मत कीजिए। आपने जो किया है ये पूरे पूरा सामने है, सब देख रहे हैं एनडीटीवी पर, ये वीडियो सामने है, आपका हाथ दिख रहा है,
1: नहीं,
2: जो गुंडे हैं आपके साथ है,
1: नहीं, मैं तो मार रहे ऊपर उसके फोन के ऊपर फोन हटाया झटके से,
2: एक रजिस्टर लेके किसी के सर पे मारा है,
1: झटके से फोन हटाया,
2: फोन पे मारा है,
1: फोन पे मत रहो, बिजी रहो, पेशेंट के बारे में सोचो, यही बोल रहा था, बंबई कैसे जा सकते है,
2: फिर से मैं पूछता हूँ आपसे, आपको हक किसने दिया?
1: बोलो,
2: जाने का आप ऐसे हॉस्पिटल जाके हाथ उठा के किसी पर मारना, फोन साइड पे करना, जो भी आप बोल रहे हैं, आपने हिंसा इस्तेमाल किया,
1: तो क्या आप डॉक्टर को परमिशन दिया है? डॉक्टर को परमिशन दिया है उधर ही जगह पे मारने का?
2: इधर उधर मत कीजिए,
1: डॉक्टर को किसने हक दिया पेशेंट के केयर ना करना? डॉक्टर किस लिए होता है? भगवान नहीं आ सकते इसके लिए, भगवान ने डॉक्टर बनाया।
2: गुंडे हो आप, कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, ये तो साफ कर दीजिए, आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो? अगर आप कॉपरेटर हो तो कानून के अंदर ही काम करना पड़ेगा आपको।
1: आप
2: गुंडे कैसे बन सकते हो?
1: सीधा जवाब देगा,
2: मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे,
1: जान बचाने
2: आपने जो
1: किया
2: सर, अगर डॉक्टर गुंडे है वो ठीक है, आप नहीं कर सकते, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप रूलिंग पार्टी के कॉपरेटर हो, आप कैसे कर सकते हैं ये सब? अगर किसी ने बेड नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, अगर किसी ने किसी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया,
1: कुछ नहीं किया है,
2: आप पुलिस के पास जा सकते हो, आप हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो, आप किसी के भी पास जा सकते हो, आप रूलिंग पार्टी के कॉपरेटर हो, आप आज कैसे उठा सकते हो नागरिक पर?
1: अगर ये हम ऐसा नहीं करते, जो अगर हम फोन के फोन नंबर मैडम का लिया और मामला आधा घंटे में सोल्व हुआ, डिलीवरी भी हो गया, मैडम ने शिफ्ट किया पेशेंट को, हमारे सीएमओ ने
2: मतलब
1: दिया मैडम, उसके साथ बात
2: करने के बाद रमेश जी
1: मामला कैसा सोल्व हो गया, और ये 5 घंटे से ये क्यों उसको रखड़ा रहे थे?
2: रमेश जी, शर्मिंदा
1: मत, डॉक्टर
2: आप बेसिकली
1: रखड़ा के रखा था ना, कोई डिसीजन ले रहा था,
2: तो फिर आप ये सुनो,
1: और इसके लिए फिर क्या कर सकते थे हम लोग?
2: मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हो एनडीटीवी पर कि आगे जाके भी अगर किसी को बेड नहीं मिला,
1: लड़की थी
2: आगे, सर सर सर
1: डिलीवरी डेट पे आ गया था,
2: सर ये सब
1: लेबर पेन शुरू हुआ था,
2: ये सब
1: बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे,
2: डोंट प्ले द कास्ट कार्ड कम्युनिटी कार्ड, ये सब
1: उसके
2: पास छुपिए आप, दलित कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, उसमें
1: नहीं नहीं, हम उसके ऊपर स्टिकअप रहेंगे सर,
2: नहीं नहीं नहीं,
1: हम उसके ऊपर स्टिकअप रहे, हम पब्लिक
2: हम मूर्ख नहीं है,
1: हमको
2: हम
1: चुनके दे
2: एनडीटीवी
1: डॉक्टर ने चुनके नहीं दिया है,
2: आपको नहीं जाने देंगे,
1: नहीं हमको पब्लिक ने चुनके दिया है सर,
2: आपको
1: सर
2: मेरा सवाल सुनिए,
1: चुनके दिया,
2: सवाल सुनिए,
1: लड़ेंगे ना
2: रमेश माथुर,
1: डॉक्टर का तो हम सम्मान करते कि कोरोना के सीजन में कोरोना का
2: आपका जो सम्मान है डॉक्टर के लिए, मैंने
1: बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया,
2: इसके लिए जो
1: हम जिसको हम कभी भूलेंगे नहीं,
2: लेकिन ये डॉक्टर्स के लिए सम्मान जो है आपके पास
1: बेकार था, हमारा पेशेंट मर सकता था उधर जगह पे, मरने की नौबत आए थे हमारे पेशेंट की सर,
2: सीधा सवाल
1: ऐसा नहीं होना चाहिए,
2: क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं
1: सर,
2: क्योंकि जब ये इंटरव्यू शुरू हुआ था आपने एक शब्द इस्तेमाल किया अफसोस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी कि क्योंकि अभी जब आपका टोन में आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं निकाल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि
1: आप एक मैसेज
2: भेज रहे हैं कि आगे जाके भी अगर ऐसा कुछ
1: आप हमको गुंडा बोल रहे हैं, किसने दिया बोल रहे हैं गुंडा गुंडा बोल रहे हैं,
2: सर
1: हम कौन सा टोन वापरेंगे?
2: मैं सीधा सवाल सुनिए,
1: हमको शर्म नहीं
2: आई,
1: पब्लिक ने हमको चुन के दिया ना, डॉक्टर ने चुन के दिया सर,
2: नहीं नहीं आप दो चीज बोल रहे हैं, एक चीज सुनिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये है कि अगर आगे जाके भी ऐसा कुछ होता है क्या आप ऐसे ही मारेंगे डॉक्टर्स को, या आपको अफसोस है कि ऐसा हुआ है?
1: नहीं सर, एक मेरा
2: अफसोस नहीं है, बिल्कुल अफसोस नहीं है,
1: आप मेरे को एक मिनट दो, आधा मिनट,
2: नहीं सीधा सवाल सर,
1: ऐसा
2: सीधा सवाल है,
1: मेरे को मैं तीन लड़के मेरे को